नमस्ते श्रोताओ, हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। अब आपको बेहतर सेवा प्रदान करने के हमारे प्रयास में हमारे साथ जुड़े रेज रेडियो ऑडियंस इंटरैक्टिव सर्वेक्षण और मूल्यांकन हमारे विशिष्ट मोबाइल ऐप के साथ मानद संरक्षक बने, जहां आप उद्घोषकों को रेटिंग दे सकते हैं, कार्यक्रमों की समीक्षा कर सकते हैं और अपनी प्रतिक्रिया साझा कर सकते हैं। बस हमारे आधिकारिक फेसबुक पेज पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें और पंजीकरण करें। आपकी सक्रिय प्रतिक्रिया हमें आकाशवाणी की विरासत को बेहतर बनाने और बनाए रखने में मदद करेगी। तो सिर्फ सुने नहीं, रेज मोबाइल ऐप के साथ बदलाव का नेतृत्व करें।

हेलो नमस्ते गुड मॉर्निंग सुप्रभात आप सभी प्यारे दोस्तों को मेरी तरफ से और आप सभी मेरे साथ सुन रहे हैं आकाशवाणी आइजोल एफएम ज़ोय 100.7। और दोस्तों आप सभी के साथ फिर एक बार जुड़ी है आप सभी की दोस्त आरजे वीएली। और दोस्तों आप सभी कैसे हैं, मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे। और यस आज की सुबह भी आप सभी ने अच्छे से पाया होगा और आप सभी ने अच्छे से शुरुआत भी की होगी। यस, और हम चाहते हैं कि आपका दिन अच्छे से बीते खुशियां और आनंद से। और दोस्तों हम बहुत ही खुश नसीब हैं कि हमें दोबारा एक नया दिन एक नई जिंदगी मिलती है ना दोस्तों। यस, इसी खुशी के लिए दोस्तों मैं चाहती हूँ आप सभी का दिन अच्छे से बीते। और आज हम प्यार भरी बातें करेंगे और अच्छे से वक्त बिताएंगे, है ना। यस, और मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे और अपने अपने कामों में जाने के लिए आप सभी रेडी हो रहे होंगे शायद। यस, और चलिए आप जो भी करेंगे काम अच्छे से करते रहना और साथ साथ हमें एफएम 100.7 को सुनिएगा, ठीक है। और अगर आपको समय मिलेगा हमसे बातें करने के लिए हमें जल्दी से संदेश भेजिएगा क्योंकि हमें आपका इंतजार रहेगा। यस, तो चलिए

आप सभी का स्वागत करती हूँ हिंदी के खंड में। और हमारा समय पूरे 9:20 तक का होगा। और आप सभी की दोस्त आरजे वियली आप सभी के प्यार के लिए, मतलब प्यार के कारण मैं यहाँ पर FM 100.7 पर दोबारा हाजिर हो पाई हूँ। इसके लिए मैं बहुत ही खुश नसीब समझती हूँ अपने आप को दोस्तों, और आप भी बहुत खुश नसीब है दोस्तों। यस, तो ढेर सारी बातें होंगी, ठीक है। तो फिलहाल अपने इस आज के सबसे पहले खंड की शुरुआत करते हैं दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत गीत के साथ। तो चलिए सुनते हैं बहुत ही खूबसूरत गीत, उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज में गाया गीत, दिल क्या करे, मेरी तरफ से आप सभी के नाम।

वेल दोस्तों, उम्मीद है आप सभी को ये दिल की आंख करे उदित नारायण और अलका याग्निक के बहुत ही खूबसूरत आवाज में गाया गीत, बहुत ही सुंदर सा गीत। यस, आप सभी को जरूर पसंद आया होगा दोस्तों। और मैं चाहती हूँ कि जैसा कि मैंने कहा था, मतलब कहा है आपसे स्टार्टिंग में, कि मैं चाहती हूँ कि आपका दिन अच्छे से बीते, बहुत ही खुशियाँ और आनंद से। यस, और हम यही चाहते हैं दोस्तों कि आपका समय अच्छे से बीता रहे। यस।

और चलिए अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और गीत सुनाने से पहले मैं आपके भेजे गए संदेश को पढ़ना चाहूंगी। यस, यहाँ पर मातलवांगा की तरफ से संदेश आया है और मातलवांगा ख्यान निमिन खान आर जे वी एली कमो वेलाओ खोंगे ती इन वही थोमरन ताई पा मुलाउलियान ले मेमो पोई लावे कवुई लावे केपन कमो बीक लाउ चेलो ngakte pa hian anjevil namaste ila ple le turkha matlwang a mission ve ke ngai te a khol shing vi kung te a moya site lo jil za ma itan ka la ne aron ti a ole kan lom lu tuke o ngakte pa bil ko clear ka sandesh par gaya me bahut acha laga aur hum bhi chahte hain ki unka samay unka din acche se bita rahe aur mere dost vi kung te a का संदेश आया है वी कुंते ख्यान अर्जे मो वी एल निमिन बान पा हो ला खान गल हो चे असिन खान ते खासिन मातलवांग मिदंग खा इलो मेल लियान व्याव नियांग चुतरो चीफ मिनिस्टर लो थेन लाई तक खान कमु चे अलो मरन तीनी दाई मेना ओ ओले चुआन kalon mo toke ang kung te idam cha em dihan kaning kom chau ze langa tro hun nuam de hun lemom takan mang chau ze langa tro shin nun chu an ngai ka che che chang hi chuan a shi om ani tro o amai ro chu ke ma ni in chan de win e hun kan man te a kan ni man te hi mo pathian nen apoi mo em em ani Soan, kaya ngayon tayong hello, namaste, kanawa jubili, ole, nang po namaste, o, patihan ko ngayon na zaray, o, shethey, a, kaumhi, masain patihan ngayon na lomtu, kasoy, ruwalin, buintu, ilawin, buintu, ihawin, FM sa oirun, beato, zong, ten, luang, taka, hunkan man, hawtay na, dusak na kalanat si, arun, timbok, ani, lomom chin le mai o in zawai chunga khan lom thu hi ka soi bang thelo o kan thil to na song song te bo khan o min lo belom a min lo tor pui loma ti teang o in fel kati ka lom tak zet in zawai chunga khan lom thu ka soi bang the don lo ti kam yo sha chak mol mol don nia to chelie filhal sonu nigam or alga yagni ke awaz me gaya ki sunte hain ऐसा लगता है मेरी तरफ से आप सभी प्यारे दोस्तों के लिए और दो बजने वाले हैं आप सभी अपने काम में जाने के लिए रेडी हो रहे होंगे बिजी होंगे तो अपने मतलब अपने काम अच्छे से करते रहिए तो ये गीत मेरी तरफ से आप सभी के नाम

दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत सा गीत सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाज़ में गाया गीत, ऐसा लगता है बहुत ही प्यारा सा गीत आप सभी को जरूर पसंद आया होगा। दोस्तों, 9 बजने वाले हैं, यस, और हम चलेंगे आपके भेजे के संदेश की तरफ गीत अगला गीत जाने से पहले, यस और यहाँ पर मेरे दोस्त जामा की तरफ से संदेश आया है। जामा हन, हेलो आरजेवीएल, नमस्ते, सुप्रभात। यस, आपको भी सुप्रभात जाम ओ। और मैं उम्मीद करती हूँ जामा बिल्कुल ठीक होंगे, है ना? यस, और अपने काम में तो आप पहुँच भी चुके होंगे और आपने तो शुरुआत भी कर ली होगी। यस, इसी तरह आप हमेशा जिंदगी में तरक्की करें, खुशियाँ मिले आपको। यस, और zamahian hello rj vl wo ina i playlist me zong zong kha i duty pinet in tan le zoram remote fm zo oi ngai la tu te zong zong te tan le control room duty te le duty officer tan le pusang ma ma te no permission bank lang le uchi bi angor do ta pale uma twa nga mission bank mai mya lovin o rj vl wo in duty no am le ron dini ole kalom tu ke ozam nang po hun chode ilo mangzel donia o chuan el zasai lo hian lal wan che bei le o le nang po che bei le o ilo duty le to mo in tia to na ka tor pui lu tuk che ran te ani e o ka lom lu tuk ke min tor pui na te o ka ngai lu in fel ka ti o chuan vipina mere dos vipin o ni min la ma te po ka nin mu a ano am le mai ma se tha hi kan lam man chin la wa in la ma te po o an lo pa in min ron to wang wang a ra sur ka ra le nga ma se o ka khong ai lu tuk min a nge min lo ngai poi mo a an ron ka wang wang te kha a lo mom ka ti soi matlab shabd nahi hai mere paas ki kyun itne acche hai log

और विपिन जैसे यस और मैं दिल से उन्हें शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और चलिए उन्होंने क्या लिखा है, विपिन लिखते हैं कि अर्शफिल नमस्ते इलोद्युति थे ले ही अलोम ओम खोप मई मासे सेगमेंट पकत चंगा मंदोन लाइ तक ही अपोई खोप मई दुवमिता मीटिंग कलंगाई सी आ, लेकिन एक छोटी सी लाइन जो काफ़ी अच्छा लगता है मुझे वो हम लिखना चाहेंगे। लाइन है कोई कोई काफी अकेला है मेरी तरह आपकी तरह नहीं आप अकेले नहीं हैं क्योंकि आपके साथ बहुत ही अच्छी खूबसूरत हम सफर आपको मिल गई है। आपको खुश होना चाहिए और आपको मतलब नाज होना चाहिए खुद पर कि आपको एक प्यार करने वाली मोहब्बत करने वाली एक हम सफर मिली है क्या पता हमें कब मिलेगा यस yes, कोई काफी अकेला है और कोई अकेला ही काफी है और कल लाइन तो देव देव ही रोन संग स्वाक थ्याम लुटुका तो निमन नॉमले आर जे वी एल ओ लदम चलो अल अल अंखो मई लो इन को छदोनिया रन ध्यानी यस कदम लोम यस yes, आप सभी के प्यार के लिए मैं बिल्कुल ठीक हूँ और यस yes, मैं कोशिश करूँगी और आप भी खुश रहिएगा ठीक है यस yes, और कभी मत सोचना अपने आप को कि आप अकेले हैं यस yes, मेरी तरह नहीं लेकिन मुझे अकेलापन अच्छा लगता है और यस yes, और चलिए और यहाँ पर पाएंगा और दुर्गेश जी की तरफ से संदेश आया है लेकिन मैं इनका संदेश इस अगले गीत के सुनाने के बाद पढ़ना चाहूँगी। तो चलिए मैं सुनाना चाहूँगी आपको शिल्पा राव और अरिजीत सिंह की आवाज़ में गाया गीत तेरे हवाले। यस मेरी तरफ से आप सभी के नाम।

दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी को मेरे साथ हिंदी के गीतों को सुनकर और मुझसे बातें करते हुए आप सभी को अच्छा लग रहा होगा। और यस, अगले गीत की तरफ बढ़ने से पहले मैं चलना चाहूँगी आपके भेजे के संदेश की तरफ। पाएंग अख्यान अर्चे वी एल हर सतना चिशंग Shankar Ling Chin Shing Fate Nima Ila Vina Duty Le Te Tura Patianin Alohwal Him Tse A Lom Potang O Randi Ani Ni E Lom Zel Nunhi Apoimo Ani Dro Paeng Wing Khan Chan Marila Ma Karon Tsukamo Karon Li Le Bang Bang Tse Ni Mo Ma Ni Gani Mu Na Khan Ase Moturi Om To Bok Si La Wa你的眼睛没老长黑黑啦长的咯好嘞昨晚明白的啊记得了谁身体上呀嘿明白的呀晚上 Namaste 好嘞能不 Namaste 哦明白的就地暖嘞因春光因家因多地个老师啊不一个地因个多不一特色子啊不提案不一那嘞ทำวันนั้นต้องเจอตัวเองตัวสักนะกันแล้วจะอู้รุนตีอันนี้โอเล่กลอมลูกตุกโอ้กลอมลูกตุกเก็บตัวดูสระสันเดชายาเฮดุรเกชจีที่ทรัพย์เซดุรเกชจีเนี่ยบ่ฮัตเอ็กกิตฟอร์มาชกีเฮ่เล็กินอุนก้าเย่จ๊อฟอร์มาชกีเดี๋ยวมาร์เรย์เพลย์ลิสต์ไม่ไม่เฮ่ดุรเกชจีมุจิมาฟ์กันนะทีเก้ लेकिन ฮัมซ์น่าร้าส์มัตฮ์นะทีเก้โอ้ yes आपको भी गुड मॉर्निंग और हम चाहते हैं कि आपका समय अच्छे से बीता रहे दिन यस और 9 बज गए हैं आप सभी अपने अपने कामों में पहुंच चुके होंगे और जो जो आप मतलब अपने अपने काम घरों में खेतों में कहीं पर भी हो आप सभी

थक चुके होंगे, करने वाले होंगे, बाहर जाने वाले होंगे. यस. तो चलिए अगले गीत की तरफ बढ़ते हैं. अगला गीत मेरी तरफ से, कहीं प्यार ना हो जाए. यस. बहुत ही खूबसूरत गीत, कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज में गाए गीत मेरी तरफ से आप सभी के लिए.

दोस्तों, उम्मीद है आप सभी को कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ में गाया गीत, बहुत ही खूबसूरत गीत, कहीं प्यार ना हो जाए। यस, प्यार प्यार के बारे में जब दिल में आता है तो मतलब कुछ ऐसा हमें मतलब मालूम होता है कि प्यार मतलब प्यार कैसी चीज़ होती है, मतलब प्यार क्या है। हर एंगल से हम अगर देखेंगे तो प्यार ऐसी चीज़ है जो हमें उनके ना होने और होने से वो सारी खुशियाँ हमें मिलती हैं, वो प्यार है। और चलिए, प्यार के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी, हमारा समय ख़त्म होने वाला है, इसलिए मैं आखिरी गीत के साथ आप सभी से विदा लेना चाहूँगी। और जाते जाते मेरे दोस्त कुंगतेह की तरफ से संदेश आया है, कुंगतेह यान इनखा सजाउ थोय थोय उला करोन लुआ वे आंग के सो मिन फ्री दोन सियांग सारोन तिया अचुंग बेरा खान ओ अचुंग बेरखा इयोम न तुरिन कन सियाम लेंग ओ कुंगते इयोम दुलो वाई अले। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी प्यारे दोस्तों को। और आज ये कलौंगा थमई मैं अंगचे ओ रोनती नि हे हे वन फिल एम एम मिलौंगा था रिंग दोनिया ओ दिचुआन हुंदे ने चुआन मैसेज ति पोखा मी रन थोनांगा। और अगले खंड पे आपकी आरजे बहुत ही यस अच्छी आरजे, लवली आरजे, स्वीट आरजे, क्यूट आरजे, आरजे ओफेली आपके साथ बातें करने के लिए, गीत सुनाने के लिए, वेस्टर्न म्यूजिक सुनाने के लिए हाजिर होगी। और मैं आखिरी गीत के साथ आप सभी से विदा लूंगी और वापस आऊंगी दोबारा 10:40 पर दोस्तों। यस, तो आप सभी अपना ख्याल रखना। और मैं जाते जाते आप सभी को एक बात कहना चाहूँगी कि अकेला रहना सीख लो, क्योंकि ज़िंदगी हर मोड़ पर साथ नहीं देती। यस, क्योंकि ज़िंदगी हर मोड़ पर साथ नहीं देती। लोग मिलते हैं थोड़े देर के लिए, अपने लगते हैं, फिर वक्त के साथ बदल जाते हैं। यस, तो ये बात हमेशा याद रखना। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप अकेला रहना सीखिए, ठीक है। यस, तो चलिए सुनते हैं ये इस खंड का आखिरी गीत, उदित नारायण और गाय याग्निक की आवाज़ में गाया गीत शुक्रिया। गीत से मैं आप सभी से विदा लेना चाहूँगी और मिलते हैं दोस्तों 10:40 पर। तो ये गीत आप सभी के नाम।

Alis lang ay sa paina kan hun kar na tur atan karon lang le zwaya dar som le ni som thum pre tan som le som li ahyan ni RJ Vili ron lo to don si a kang te pa bil ko chi han ni la play le tur kha bi si de sika i mang moi te vi kung te moi sai to le tang kala ni aron ti a hi hi cha kha ka du si a chuan in kung te han ron type me ka ka cha man lo ni poina le pe ka karon cha nge nge don ya o chuan in ओ तो थिंग गलो थिरे तिर रन थिंग तसे आखामोम लौले मै कन क्लस्टर हे थु सोइते खा बिंग वार थाक तक जेट कन होस पथुम टेन हे तकिम प्रोग्राम अन काय श्वाई बक अचंग थुंग खप मै रन ति नि एंगिम खा चंग थुंग इन अ फिल फाइवेल फकनि कन क्लस्टर हे पु दि आर ल रोप या थु सोइ हि चु आंगाइ नोम छिन नि केपो इन थु सोइ थ्याम कति ए मे मन कन पु हि चु का छवांग बे थोद नि ति खा कन सोइ तेल पा दु अनि ओ chuan in hram thanjuali pui boiina di pui tihla sakhian in kan hun kan kharanga in tan liao liao ka hlana tin pui boi zai du mm 2 pc de sikai tan liao liao pokan hlan bok ang o in the fight tan is la chuan dar son pania zai moi hun man pui tu 7 kalaw le tiang ga din tong le don an rjcs sang te ginie

हेलो नमस्ते दोस्तों, आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ FM और 100.7 पर. और यस, हिंदी के खंड पे आप सभी का स्वागत है. और आप सभी के साथ जुड़ी है आप सभी की दोस्त आरजे वेली. और दोस्तों, आप सभी का समय कैसे बीत रहा है? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी का समय अच्छे से बीत रहा होगा और आप अच्छे से अपने अपने काम अच्छे से कर रहे होंगे. आप जो भी कर रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, चाहे वो नज़दीक हो चाहे वो दूर हो, और आप किसी सफ़र के लिए भी जा रहे हैं कहीं, तो आप जहाँ पर भी रहेंगे दोस्तों, कहीं पर भी जाएंगे, आप अपना ख्याल रखना, ठीक है? और हमेशा अच्छे से अपने वक्त को बिताने के लिए कोशिश कीजिए, है ना? तो चलिए मेरे साथ दोबारा प्यार की दुनिया में, संगीत की दुनिया में, हिंदी के संगीत की दुनिया में मेरे साथ जुड़ जाइए. आप सभी के प्यार भरे संदेशों का भी इंतज़ार रहेगा दोस्तों. चलिए हमारे इस खंड की शुरुआत करते हैं. और आपको इस खंड में मैं सबसे पहले सुनाना चाहूंगी कुछ कुछ होता है गीत, कुमार सानू नहीं, उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज में गाए गीत. मेरी तरफ से इस खंड की शुरुआती गीत आप सभी के नाम.

यस मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे पेश किए गए गीत आप सभी को कैसा लगा? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को पसंद आया होगा और आप हमें सुन रहे होंगे अपने काम करने के साथ साथ। यस, हम और भी दूसरा गीत आप सभी को सुनाएंगे दोस्तों।

चलेगी. यस. जिंदगी के बारे में अगर हम सोचेंगे तो जिंदगी हमें कभी खुशी देती है, कभी गम देते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जिंदगी हमसे खफा है, हमसे नाराज़ है, हमसे गुस्सा है. जिंदगी हमें एक अच्छा इंसान बनाने के लिए हमें वो सारी मतलब वो चीज़ें देती है जिसके चलते हमें वो एहसास हो कि ऐसा हमें मतलब बनना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, है ना दोस्तों. इसलिए कभी जिंदगी से नाराज़ मत होना, क्योंकि जिंदगी आपसे नाराज़ नहीं है, ठीक है. आपको सही रास्ता दिखाती है, ठीक है. और चलिए अगले गीत की तरफ बढ़ते हैं. अगला गीत मैं सुनाना चाहूंगी क्यों किसी को. यस, उदित नारायण जी की आवाज में गाया गीत है. और मैं अभी कुंगते की तरफ से संदेश आया है. गुंगते ह्यान अजय मोवी अली ओ इन लव बितो से एम अनि ही आ इन लरे खोप मई रे निया तो एफ एम जो ओया ह्यान रे इंगे रे लो चुकेशे चौंग लवा कंसेक में ना ह्यान रे पोनी मई थे तुनला चु कश्या अंगिन ओ ओ कश्या दाना चुन अबुआई वेले इन कश्या नी तुनला चु अन ऑफिस ते मो मानी खान इ कन इन बेजवाया दार सो पनी अते कन होंगाई छीना आहा ते तखा आरन सोया अखोंगाई था खोप मई ओ और कुंते अपन मिलाऊ गाई था ती कंशिया आ नॉम खोप मई. तो चलिए बहुत कुछ है दोस्तों आप सभी से कहना, आप सभी के साथ शेयर करना जिंदगी के बारे में, दोस्ती के बारे में, मोहब्बत के बारे में. लेकिन जब समय आएगा ना दोस्तों, मैं आपको बताती रहूंगी. फिलहाल चलिए गीत सुनते हैं क्यों किसी को. बहुत ही खूबसूरत गीत है, उदित नारायण जी की आवाज में गाया गीत मेरी तरफ से आप सभी के लिए. और के गए थे ते खाते बाबिल को ठेरते उनका संदेश आया है. इस गीत के सुनाने के बाद हम चलेंगे, ठीक है.

वेल दोस्तों, उम्मीद है आप सभी को उदित नारायण जी की आवाज में गाया गीत क्यों किसी को वफा के बदले वफा क्यों नहीं मिलती। यस, हम अक्सर हमारे पास ऐसे सवाल होते हैं जिंदगी से। हम कभी कभी मतलब खफा होते हैं। हमारे पास इतने ज्यादा मतलब ऐसे सवाल होते हैं कि क्यों ऐसा हुआ, ऐसा क्या कर दिया हमने कि जिंदगी हमसे खफा हो गई, है ना दोस्तों। लेकिन हमें हमेशा सोचना चाहिए कि हम बहुत खुशनसीब हैं दोस्तों कि जिंदगी अभी तक हमारा साथ दे रही है। जिंदगी हमें सिखाने के लिए उन चीज़ों को हमारे सामने लाते हैं। तो नाराज मत होना किसी से दोस्तों। यस, तो चलिए फिलहाल हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। और गीत सुनाने से पहले हाकते पाहियान और जो भी इला प्ले लेतुर खा मोया साइड लोमा ट्वांग मिशन वे जिलल जामा के ngai tia kholshing itan kala ne aron dile a fel chin de mai itlan sakte yan la ushe toranga ila tiro wina hunuam tak ilo manzil thina do sang ka lan che ni om chan ke ngai tia hian avatar it it ve ka nau ila music chu mase ka dawai tharing che ni a iple letur kha ma huniram lo tan kala ne aron di ani ole ngatinge le o tan chut chut le o ole chan zama hian kalo in report zoi aron di a ka chan pala hi a wai chu chung hian mi hi aron text china chan rjbl ngor o ke wala message aron

ओके हम सेकंड केक का रिलोक दे अंग। तो चलिए दोस्तों हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। मैं अगला गीत सुनाना चाहूंगी। तूने जो ना कहा मैं वो सुनता रहा। मोहित चौहान की आवाज में गाएगी मेरी तरफ से आप सभी के नाम।

दोस्तों, उम्मीद है आप सभी को मोहित चौहान की आवाज में गाया बहुत ही खूबसूरत सा, बहुत ही सुंदर सा गीत तूने जो ना कहा मैं वो सुनता रहा। दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है, क्या करें, जिंदगी है, आपको ढेर सारे रंग मिलेंगे, कुछ रंग अच्छे होंगे, कुछ रंग बुरे होंगे, लेकिन रंग कोई बुरा नहीं होता है, रंग तो रंग होता है। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि आपको बुरे रंग मिलेंगे, खरा अच्छे रंग मिलेंगे। दोस्तों, जिंदगी है, आपको मतलब समझना है ना दोस्तों। तो चलिए, जो हो गया सो हो गया, हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, देखेंगे आगे क्या होगा, है ना दोस्तों। तो चलिए, अगला गीत मैं सुनाना चाहूंगी तेरे नाम, और ये गीत मैं सुनाना चाहूंगी ये गीत उरमा, जो अब हमारे साथ नहीं है, वो किसी मतलब पिछले दिनों में वो गुजर चुके हैं। वो ये इस गीत को हमेशा फरमाइश करते थे तेरे नाम, मतलब उनको ज़्यादा तो फरमाइश नहीं करते थे, लेकिन उनको ये गीत बहुत ही पसंद था, मुझे याद है तेरे नाम। तो ये गीत उनके याद के लिए मैं सुनाना चाहूँगी। उरमा हमारे FM लिसनर्स हैं, उनकी आत्मा को शांति मिले, हमेशा हमारी तरफ से ये प्रार्थना है। उनके परिवार वालों को भी भगवान रक्षा करे। और केवाला की तरफ से संदेश आया है, केवाला ह्यान दार क्वालेमी सो।

बरुख खान उन्होंने संदेश भेजा था मुझे, लेकिन कल मुलोंगे मनी ओ कछियारपो कशलाओ कौवाल आज भी अजा मनी लो जा मनी लो पोन गनगाई चे रंतिया चान तुन सकमें भी कहे चान आज भी एल ओए सोई तूर कवान कहुल हुल मई हुल चांग ही ओ मनी तर ओ कश्याम श्याम तुम से ओ चाह के पोमिन श्याम बे अंगा तर ओ ये गई ते हियान इमो नि जान कमु मंगा तारजन फिल्म खा गन लो चंग आ साई चुंग आया केल पुई चुंगा कपू के वाला ही अलो चुआंग नुल नुल आ कथि रेंग लाइन कहर थुत आ क उइजिया मे चुरन दिनी ते दे ये चन ओले तो चले फिलहाल इसी तरह हम हंसी मजाक करते रहेंगे और चलिए सुनते हैं तेरे नाम मेरी तरफ से आप सभी के लिए।

यस दोस्त, तो हमारा समय खत्म होने वाला है। आप सभी को एक गीत के साथ आप सभी से विदा लेने का समय हो चुका है। और दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी को मेरे साथ हिंदी के गीतों को सुनकर आप सभी को अच्छा लगा होगा दोस्तों। यस, और यहाँ पर जाते जाते संदेश में पढ़ना चाहूंगी केंगे थे तो आ एल बी रेंथ हियान आर जे वी एल इस सेगमेंट अलाउ

in le ta mo i ngei om hle mei i o le nui ri kan shele don a anuam ngo tang i play le tur kha fm za oi ngai le tu zong zong tan le i tan o ron ti ni lb ren thlei alom om hle mei ha aapke pyar bhare sandesh ke liye bahut bahut shukriya yes aap sabhi ko dil se shukriya mera saath dene ke liye hame sunne ke liye dosto aur jaate jaate is khand से मैं आप सभी से कहना चाहूंगी कि मैं वापस आऊंगी दोबारा यस आज के लिए ये मेरा आखिरी खंड नहीं है मैं वापस आऊंगी 12:40 यस 12:40 पर मैं दोबारा अपने तीसरे खंड को लेकर हाजिर रहूंगी दोस्तों आप सभी का इंतजार रहेगा ठीक है यस आपके संदेशों का इंतजार रहेगा आप कहीं मत जाना हमें मालूम है कि आप हमसे दूर नहीं जाएंगे हमें छोड़ के नहीं जाएंगे क्योंकि जहां भी आप जाओगे ना ये FM Zone 100.7 आपको छोड़ के नहीं जाएंगी अगर आपने ऑफ किया तो इसका मतलब है कि आप हमें छोड़ के चले जाएंगे तो हमें ये पूरी उम्मीद है कि आप कभी FM Zone 100.7 को ऑफ नहीं करेंगे अपने काम करने के साथ साथ हमें सुनते रहेंगे यस इस तरह आप सभी का दिन अच्छे से बिताने के लिए हम आपका साथ हमेशा देंगे आज तो 3 बजे तक आपका साथ देंगे और 4:30 बजे से फिर शुरू होगा फिर पूरे रात के 10:30 बजे तक आपका साथ देते रहेंगे दोस्तों ठीक है तो जब भी आपको मौका मिलेगा ना आपको समय मिलेगा तो आप तुरंत ऑन कीजिए हमें सुनिए और हमसे बातें करिए दोस्तों हमें आपका इंतजार रहता है आपके प्यार भरे संदेशों का इंतजार रहता है तो चलिए प्यार भरे संदेश के लिए दोबारा आप सभी को दिल से शुक्रिया और प्यार भरे गीतों के साथ गीत के साथ यस रात लंबिया गीत के साथ मैं आप सभी से विदा लेना चाहूंगी तो मिलते हैं 12:40 पर तो ये गीत इस खंड का आखिरी गीत मेरी तरफ से आप सभी के नाम

हेलो नमस्ते दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आप सभी का मैं स्वागत करती हूं दोबारा हिंदी के खंड पे, और आप सभी मेरे साथ सुन रहे हैं आकाशवाणी आइजोल FM जो 100.7 दोस्तों. और हम मैं उम्मीद करती हूं कि आप सभी का दिन अच्छे से बीत रहा होगा. और दिन के 12 बज चुके हैं, एक बजने वाला है, और आप सभी अपने अपने काम से थोड़े से फ्री हो चुके होंगे. और दिन के चाय वगैरह वगैरह आप पी रहे होंगे. और आप जो भी करेंगे आप अच्छे से करते रहना, और साथ साथ हमें इस FM जो 100.7 को सुनते रहना दोस्तों. और आप सभी का इंतजार है दोस्तों, आप सभी के प्यार भरे संदेशों का. वेन टू ओ दो सकना का दोंग मोल मोल बोका अनुआम अश ओम नुआम कती त्यांग ओ अश ओम नुआम मंगची का अश ओम बोक्सी एंगे अलोम ओम बोक्सी चुआन चुआन. और मैं आपको एक स्पेशल चीज बताऊंगी, लेकिन इस गीत के सुनाने के बाद. वे ना सान कछान पा ओ एम एम आई और जो हमेशा हमें सुनते हैं, हमें संदेश भेजते हैं. वो आके उन्होंने आके हमसे, मतलब यहाँ आके हमसे बातें की. तो उसके बारे में आपको बताऊंगी, लेकिन ये गीत, इस खंड का शुरुआती गीत मैं सुनाना चाहती हूँ, सुकून. बहुत ही खूबसूरत गीत, सुकून गीत मैं सुनाना चाहूंगी. तो कहते हैं कि जिंदगी में प्यार, प्यार ऐसा चीज है जो हमें सभी चीजों की तरह, हर एंगल से भी आप अगर नाप के देखेंगे ना, प्यार एक सुकून है दोस्तों. तो चलिए सुनते हैं बहुत ही खूबसूरत गीत मेरी तरफ से आप सभी प्यारे दोस्तों के लिए, और स्पेशली मेरे दोस्त जामे के लिए.

दोस्तों, उम्मीद है आप सभी को हमारे आज यस इस खंड का सबसे पहला गीत सुकून आप सभी को जरूर पसंद आया होगा. और यहाँ मेरे साथ बैठे मेरे दोस्त वो भी इस गीत को सुनकर बहुत एंजॉय कर रहे हैं और किसी को याद कर रहे हैं. यस, याद करना, किसी को मिस करना कोई बुरी बात नहीं है, है ना दोस्तों? और हम भी आपको मिस करते हैं, आपको याद करते हैं, आपके संदेशों का इंतजार करते हैं दोस्तों. वो लम्हे जो हमने मतलब साथ साथ निभाए थे, उन सबको हम जब याद करते हैं तो मतलब बहुत अच्छा लगता है ये सब. तो चलिए, आप सभी का दिन ऐसे अच्छे से बीता रहे. और फिलहाल मैं आप सभी को बहुत ही प्यार भरा गीत सुनाना चाहूंगी. यस, गीत मैं सुनाना चाहूंगी, मैं रहूं या ना रहूं. यस, मामूनी ही रे लुत्तुका. तो ये इस गीत को वो बहुत पसंद करते हैं, मैं रहूं या ना रहूं, तो इसलिए मैं ये गीत पेश करना चाहूंगी. और यहाँ बैठे मेरे दोस्त का भी मैं उनके यादों को मैं ताजा कर रही हूँ और मैं करती रहूंगी. यस, तो चलिए, मैं आप सभी के यादों को मैं ताज़ा करने के लिए ये गीत सुनाना चाहूंगी. बहुत ही खूबसूरत गीत है, अरमान मलिक की आवाज़ में गाया गीत, मैं रहूँ या ना रहूँ मेरी तरफ से. और इस गीत के बाद हम चलेंगे आपके भेजे गए संदेश की तरफ, ठीक है? यस, तो चलिए सुनते हैं.

वेल दोस्तों, उम्मीद है आप सभी को अरमान मलिक की आवाज़ में गाया गीत यस में रहूं या ना रहूं, बहुत ही खूबसूरत सा गीत आप सभी को जरूर पसंद आया होगा दोस्तों। तो चलिए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और मैं आपको अगला गीत सुनाना चाहूँगी। यस एच एल रिम्पुया की आवाज़ में गाया गीत तेरी मिट्टी, यस बहुत ही खूबसूरत गीत। और इस गीत को फरमाइश की है मेरे दोस्त यहाँ जो मेरे साथ बैठे हैं, यस ट्वांगा, उनका फरमाइश गीत है आप सभी के लिए मेरी तरफ से दोस्तों। और उससे पहले मैं आपके भेजे गए संदेश की तरफ चलना चाहूँगी। यहाँ पर मिंगमोइते की तरफ से वालल गुड आफ्टरनून कहकर हमें संदेश भेजा है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिंगमोइते आपको भी गुड आफ्टरनून, और आपका दिन कैसे चल रहा है और हमारे साथ हिंदी के गीतों को सुनकर आपको कैसा लग रहा है? अगर आपके पास भी हमारे दोस्त ट्वांगा की तरह फरमाइश गीत होगी तो आप बेशक पेश कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं। यस और कुंगते ह्यान RJC asangtein ka message to ber pani achyar du to lo minning to anyang ran dile dai maya kungte hi ning lo wang kungte achyar man to lo niang wen chumo atiti hi atluang lu tu ka atal zwang tu ka ti ti char char mo ni min lam pang te kan han sui or review te kan han nei ni chumo tiang ber kha sui tu ka alo en eng lo nya ke lo shil don nya o हेलो ओ चार मन लो अन यांग लो शिथ हम शाम शाम रो ओ कुंते। तो चलिए तेरी मिट्टी हमारे दोस्त लुआंगा की तरफ से फरमाइश की आप सभी प्यारे दोस्तों के लिए मेरी तरफ से आप सभी के नाम।

दोस्तों, उम्मीद है आप सभी को लर रिम्पोया की आवाज में गाया गीत कल हो न हो उम्मीद है आप सभी को पसंद आया होगा। लर रिम्पोया जाए थे हम खूब में तिरो यस। तो दोस्तों, ये मैं कहना चाहती हूँ कि हर इंसान में कोई ना कोई एक टैलेंट छुपा होता है। उस टैलेंट को आप इस्तेमाल करने के लिए कोशिश कीजिए। ऐसा नहीं है कि एक इंसान के लिए ही टैलेंट ईश्वर ने बनाया है, ऐसा नहीं है। ईश्वर ने हम सभी को कुछ ना कुछ हमारे अंदर टैलेंट दिया है। हमें उसे हमें यूज़ करने के लिए हमें कोशिश करना चाहिए, ढूंढना चाहिए। दोस्तों, आप ही ढूंढिए, आपके पास ढेर सारे टैलेंट होंगे, है ना दोस्तों। तो यहाँ पर एल्डरिन थे या ना जो भी प्लेलिस्ट अन्न लुटुक लाऊंगा इधर रिंग से निया निले गिन कंगाई इधर ज्यादा से ओ निया मनवे ले लाऊ लुट जुआ ये रंटिया ओले लामों चिन्ह मैं मैं मौत है यार बंदर अमौत तो परंतु बोकनी ओले वन नॉम नॉम दे विन का लोमंग से रू ओ तो चलिए अगला गीत मैं सुनाना चाहूंगी। बहुत ही खूबसूरत गीत, क्या कहना आप सभी के नाम।

वेल दोस्तों, उम्मीद है आप सभी को क्या कहना कविता कृष्णमूर्ति और हरिहरन की आवाज में गाया गीत आप सभी को जरूर पसंद आए होंगे। दोस्तों तो चलिए अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और आगे मैं आपको क्या सुनाना चाहूंगी आप सभी को, तुझे याद ना मेरी आई, यस ये गीत मैं सुनाना चाहूंगी आप सभी प्यारे दोस्तों को। तो चलिए सुनते हैं ये बहुत ही प्यारा सा गीत आप सभी के नाम। और दोस्तों अगर आप मतलब आप सभी प्यारे दोस्तों से बहुत कुछ कहना है, मतलब मेरे पास ऐसा मतलब बहुत कुछ है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, लेकिन अभी सही समय नहीं है। यस, अभी मूड नहीं है इन सब बातों को मतलब बातों को आपके सामने रखना, कहना, बताना। दोस्तों बस मैं चाहती हूँ कि आप हमेशा खुश रहें। दोस्तों ज़िंदगी ऐसा चीज़ है ना दोस्तों कि ज़िंदगी हमें बहुत दर्द देती है, लेकिन वो दर्द हमें एक लेसन सिखा के भी जाती है ना दोस्तों। यस, इसलिए कभी उदास नहीं होना है, अपने प्रेजेंट लाइफ को अच्छे से जीना है ना, बहुत ही खुशी से अच्छे से। और आप किसी के लिए बुरा मत सोचिए, बुरा मत कहिए, है ना दोस्तों। यस, और मैं नहीं चाहती दोस्तों कि आप किसी को भी बुरा भला कहे, उनके बारे में बुरा सोचे। यस, अगर आपके बारे में कोई बुरा कहता है, बुरा सोचता है, उनको सोचने दीजिए, उनको करने दीजिए, लेकिन आप अच्छे इंसान हैं, आप अच्छे इंसान बनने के लिए कोशिश कीजिए। अच्छे इंसान कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाते हैं, है ना दोस्तों। तो चलिए इस गीत के साथ मैं आप सभी से विदा लेना चाहूँगी, तुझे याद ना मेरी आई, बहुत ही खूबसूरत गीत, इस खंड का आखिरी गीत, और मिलते हैं 2:05 पर। ठीक है, तो ये आखिरी गीत आप सभी प्यारे दोस्तों के लिए।

हेलो नमस्ते, गुड आफ्टरनून, शुभ दोपहर आप सभी प्यारे दोस्तों को और आप सभी हमारे साथ दोबारा यस सुन रहे हैं आकाशवाणी आइजोल FM 100.7 और आप सभी का हम स्वागत करते हैं हिंदी के खंड पे। दोस्तों, हिंदी के खंड पे आपके साथ जुड़ी है आप सभी की दोस्त आरजे वीएलए दोस्तों, और आप सभी का स्वागत है दोस्तों हिंदी के खंड में। और आप सभी का दिन अच्छे से बीत रहा होगा और आपके समय को, दिन को और भी ताजा और अच्छा बनाते हैं बहुत ही खूबसूरत गीत के साथ। और सुनते हैं इस खंड का सबसे पहला गीत, इश्क वाला लव, मेरी तरफ से आप सभी के नाम।

वेल दोस्तों, उम्मीद है आप सभी को इश्क वाला लव यस गीत आप सभी को जरूर पसंद आए होंगे। और अब हम चलते हैं अगले गीत की तरफ और हमारा समय भी चलते जा रहा है। दोस्तों क्या करें, हम समय को रोक नहीं सकते और अगर रोकना भी चाहते हैं तो हमारे पास ऐसा पावर नहीं है जो हम समय को रोक सके, है ना दोस्तों। यस, तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला गीत मैं आप सभी को सुनाना चाहूंगी जो आपको पसंद आए, जो आपको अच्छा लगे दोस्तों। शायद ही यस आप वास्ते गीत भावनी यस

ध्वनि, यस, ध्वनि की आवाज में गाया गीत वास्ते। ये गीत शायद आपको पसंद है। ये गीत बहुत ही फेमस है। तो आप ये गीत आप सभी जानते होंगे। तो चलिए सुनाना चाहूंगी वास्ते, मेरी तरफ से आप सभी के नाम।

0: ये तो चल नहीं रहा है।
1: ये क्या हुआ?
2: What happened?
3: पावर चला गया होगा।
0: अब क्या करेंगे? एग्जैक्टली एट 10 AM आज मेरा ब्रेकअप हो गया। इसलिए जिसके साथ गाना था वो आया ही नहीं। बचा मेरा ब्रोकन हार्ट और ये ब्रोकन फोन, जो किसका है पता नहीं, पर इसका वॉइस नोट, वाओ, मेरे शो में मेरा साथी बन गया। पर अब शायद इस वॉइस नोट ने भी मेरे साथ ब्रेकअप कर लिया। आई एम सॉरी, एक्सक्यूज मी।

स्मिगाया गीत, अगर तुम साथ होते, आप सभी को जरूर पसंद आया होगा दोस्तों. यस, हमारा समय खत्म होने वाला है. जी तो करता है कि आपको यूं ही गीत सुनाते रहे, लेकिन क्या करें, समय की पाबंदी के कारण यस हम ऐसा नहीं कर सकते. आप सभी जानते होंगे दोस्तों. और यहाँ पर गीत सुनाने से पहले मेरे दोस्त जामा की तरफ से संदेश आया है. जामा यनर्जी विल वो इन गुड आफ्टरनून रोंती ना बोले ओ जाम वो इन टू अ गुड आफ्टरनून जोल वो इन तान खम ओम लो व्याओ ना चुंग इन इस सेगमेंट टॉप खारपुई टूर इन कलो इन रिपोर्ट ले जोए जोए प्रांतिकिन होला तीन इतक सासुसेन ना लोंगाई पोई मोहले अंगसे ओ खानु मल सोम ना तम तक दोंग इन चुसेन ना छाने हेरु मोई रू ना कनिन तोंग ले थ्वाई दोनिया नेक्स्ट सोंग इतान चाउ अरंत्यानी कचानपा हि छुहान फिल बोंग बोंग छिन तक एम कतलुक लाउ छिन ले मै लुक लाउ रि मि इन नम बेक इन गेशिया केंगे ते हियान इला होलो इला होलो मो कनाउ दु तक पोइन हुन पो अहेर लियाम ले मै दोने कलो गाय थरेंग चेनिया ओ एसएमएस कलो ड्रॉप लो पो हियान इमल लो अनि ति खा शेरिंग अंगचे अरंतानी ओ अवन लिम ओम छिन तक एम अवन नोम छिन तक एम hun rei lo te kara kalo lan lo chung te po khan kalo ngai hlom em em chowa amero chu ale in du sakna zara te in chung trai puina zara te po anyang chu tro kanin tong le wat theya ti chuan or me umit karti hu dobara jaldi. Yes, is FM's 100.7 पर दोबारा मुलाकात होगी. और जब तक हम नहीं मिलेंगे, आप सभी अपना ख्याल रखना और हमेशा खुश रहना दोस्तों. यस, और मैं चाहती हूँ कि आप हमेशा खुश रहें जिंदगी में. आपको कुछ भी हो जिंदगी में ना, आप पीछे मत मुड़ना, बस आगे आगे की तरफ बढ़ते रहना. ठीक है, तो चलिए ये इस खंड का आखिरी गीत मैं आप सभी को सुनाना चाहूंगी. और ये गीत तू जो मिला के आवाज में गाए गीत से मैं आप सभी से विदा लेना चाहूंगी. और आज जिन्होंने भी मुझे संदेश भेजे उन सभी को मैं दिल से शुक्रिया अदा कहना चाहूंगी. और मैं अपने आप को, खुद को बहुत ही खुश नसीब समझती हूँ कि आपकी तरफ से मुझे इतना ढेर, इतना ज्यादा यस ढेर सारा प्यार मिला. उन सभी प्यार के लिए दोस्तों आप सभी को दिल से शुक्रिया अदा कहना चाहूंगी. और मैं चाहती हूँ कि हमेशा जिंदगी में हमारा ये जो दोस्ती का संबंध है, प्यार का जो संबंध है, हमेशा बरकरार रहे दोस्तों. यस, आप जो जिस इंसान को आप प्यार करते हैं, यस, जो आपके लिए बहुत स्पेशल है ना दोस्तों, उनको हमेशा हर दम हर पल जिंदगी भर उनके लिए आप खुद को एक अच्छा इंसान बनाने के लिए कोशिश कीजिए. उन्हें प्यार दीजिए. जितना प्यार आप दूसरों से बांटेंगे, उतना ज्यादा, उससे भी ज्यादा यस आपको प्यार मिलेगा. ठीक है दोस्तों. यस, तो अच्छे मतलब कहना तो कुछ बहुत कुछ है लेकिन अब समय भी नहीं है दोस्तों कहने के लिए. तो चलिए फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया दिल से आप सभी को. और मैं चाहती हूँ कि आप सभी ख्याल रखें अपना. ठीक है, यस, आप कहीं भी जाएंगे, जो भी करेंगे, आप ख्याल रखना अपना. और अच्छा काम करना दोस्तों. यस, सच्चे रास्ते पर ही चलना, कुछ गलत काम मत करना. ठीक है, यस, तो चलिए ये आखिरी गीत इस खंड का मेरी तरफ से आप सभी के लिए. और मिलते हैं जल्द ही FM's 100.7 पर. तब तक ले दोस्तों, आरजे वेली की तरफ से बाय बाय, टेक केयर, बे कूल.

0: Hei hi Akashvani Aizol FM zo oiza point pasare changa panchwa ani vo inju nikwa sanghe somni paruk thole ni ta na kan hun voi khatna kan zo tareng mai min ngai khatu te zong zong chuma lom thu kan suya kan hun voi ni nahi tlai dar li le chan via kan chan le dona min longai thale cheu turin kan soma chu hun man pui tu cheu hi lewat feli rg of felikani a control room engineer duty hi ke vanel ruata ani in zavai ni manwam vek ule
1: akashvani samachar ke sath main jagriti sharma प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में देश के युवाओं महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि 140 करोड़ नागरिकों की राष्ट्र प्रथम की भावना से प्रेरित होकर सरकार विश्वास विकास और जनकल्याण के लिए समर्पित है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत से प्रेरित निरंतर प्रयासों के माध्यम से देश एक मजबूत और आत्मनिर्भर भारत बनने की ओर अग्रसर है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राष्ट्रव्यापी समारोहों का शुभारंभ करेंगे। इस अभियान ने देश भर में मातृ स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ही के दिन वर्ष 2016 में इस योजना की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य सभी गर्भवती महिलाओं को मुफ्त सुरक्षित और बेहतर प्रसव पूर्व स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। योजना के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर 75 रूपये का स्मारक सिक्का और 5 रूपये का एक विशेष डाक टिकट जारी किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन मध्य प्रदेश के इंदौर में शुरू हो गया है। सम्मेलन में ब्राजील चीन रूस और दक्षिण अफ्रीका सहित 21 देशों के कृषि मंत्री वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ शामिल हैं। इसमें खाद्य सुरक्षा जलवायु अनुकूल खेती कृषि नवाचार कृषि व्यापार और छोटे किसानों के सशक्तिकरण जैसे कई सत्रों का आयोजन किया जा रहा है। कृषि मंत्रियों के बीच एक विशेष संवाद 12 जून को आयोजित किया जाएगा। मंत्री स्तरीय बैठक 13 जून को होगी। सड़क परियोजना जोजिला सुरंग का अंतिम चरण आज सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। इससे कश्मीर घाटी और लद्दाख के बीच हर मौसम में संपर्क स्थापित होने की संभावना बढ़ गई है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने रिमोट बटन दबाकर लद्दाख के मिनमर्ग में जोजिला सुरंग के पूर्वी प्रवेश द्वार के पास विस्फोट किया और इसे कश्मीर तथा लद्दाख के बीच हर मौसम में संपर्क सुनिश्चित करने का एक ऐतिहासिक क्षण बताया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी उपस्थित थे। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि ये सुरंग श्रीनगर और लेह के बीच हर मौसम में संपर्क प्रदान करेगी। समुद्र तल से 11,578 फीट की ऊंचाई पर निर्मित जोजिला सुरंग पूर्ण होने पर एशिया की सबसे लंबी सड़क सुरंग बन जाएगी। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना करते हुए कहा है कि वह धार्मिक शब्दावली का इस्तेमाल करके अपने नागरिकों के बीच भारत के खिलाफ नफरत फैला रहा है। भारत ने पाकिस्तान पर सक्रिय आतंकवादी संगठनों को फितना अल हिंदुस्तान बताकर दुष्प्रचार फैलाने का भी आरोप लगाया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक सत्र को संबोधित करते हुए भारत के स्थायी प्रतिनिधि और राजदूत

0: पर्वतनेनी हरीश ने कहा कि पाकिस्तान भारत पर दोष मढ़ने का प्रयास कर रहा है।
1: पाकिस्तान द्वारा अफगानिस्तान में किए जा रहे हवाई हमलों में बड़ी संख्या में आम लोग हताहत हो रहे हैं। भारत इन हमलों की कड़ी निंदा करता है। अफगान क्षेत्र पर किए गए ऐसे सैन्य हमले अंतर्राष्ट्रीय कानून, संयुक्त राष्ट्र चार्टर और किसी भी देश की संप्रभुता के सिद्धांत का स्पष्ट उल्लंघन है। निर्दोष नागरिकों की मौत और विध्वंस को सैन्य कार्रवाई का नाम देकर उचित नहीं ठहराया जा सकता। अपनी आंतरिक विफलताओं और समस्याओं का दोष पड़ोसी देशों पर मढ़ना पाकिस्तान की पुरानी प्रवृत्ति रही है।
0: प्रवर्तन निदेशालय ने हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड से जुड़े धन शोधन मामले में पंजाब, उत्तर प्रदेश और दिल्ली एनसीआर में छह स्थानों पर छापेमारी की। इसमें पंजाब के लुधियाना और जालंधर, उत्तर प्रदेश में बरेली तथा दिल्ली एनसीआर क्षेत्र शामिल हैं। मौसम विभाग ने बृहस्पतिवार तक कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने आज कर्नाटक, केरलम और माहे के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट भी जारी किया है। क्रिकेट में दामुला में एक दिवसीय त्रिकोणीय श्रृंखला के पहले मुकाबले में भारत ए ने श्रीलंका ए को 278 रनों का लक्ष्य दिया है। जवाब में श्रीलंका ए ने ताजा समाचार मिलने तक 10वें ओवर में बिना कोई विकेट खोए 65 रन बना लिए हैं। इससे पहले भारत ने निर्धारित 50 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 277 रन बनाए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi today said the government has spared no effort in empowering the country's youth, women and farmers over the past 12 years. In a social media post, Mr. Modi said, with the blessings of 1.4 billion citizens and the spirit of nation first, the government is dedicated to trust, development and public welfare. The Prime Minister noted that as a result of these tireless efforts, today the country has gained a new identity on the global stage, from infrastructure to the digital revolution. Mr. Modi underlined that to realize the resolve of a developed India, the government will continue to move forward relentlessly on the path of service, good governance and prosperity. India has strongly criticized Pakistan at the United Nations for running an organized factory of hate that exploits religious terminology to cultivate permanent hostility towards India among its citizens. Speaking at a United Nations Security Council session, India's permanent representative to the United Nations, Parvathaneni Harish, slammed Islamabad for propagating state-sponsored disinformation by labeling militant outfits operating inside its own territory as Fitna al-Hindustan. The ambassador targeted Pakistan's political framework and the dominant role played by its military in governance, pointing to recent constitutional amendments as clear indicators of expanding military dominance over civilian authorities. He also condemned Islamabad's cross-border military operations, holding Pakistan accountable for significant civilian casualties resulting from its aerial assaults in Afghanistan. Mr. Harish reiterated, dressing up a massacre as a military operation does not absolve the perpetrator. He asserted that Pakistan possesses a protracted track record of holding its neighbors responsible for its own internal shortcomings.
3: Pakistan's campaign of military airstrikes against Afghanistan is causing huge civilian casualties and sufferings to the Afghan people. We reiterate Secretary General's deep concern at civilian casualties caused by airstrikes, cross-border firing and targeted killings. We support the Secretary General's call urging compliance with obligations under international law, including international humanitarian law, and ensuring protection of civilians. Such unconscionable acts of violence are a blatant assault on Afghanistan's sovereignty and a threat to the region's peace and stability. India strongly condemns the airstrikes on Afghan territory, which are flagrant violations of international law and the UN Charter and the principle of state sovereignty.
2: Union Home Minister Amit Shah will launch the Land Port Management System, LPMS, in New Delhi today. This initiative reflects the government's commitment to smart border management, aiming to enhance efficiency, transparency and security in cross-border trade and passenger movement through technology-driven solutions. LPMS is a digital platform designed to integrate operations across land ports into a unified system. Health and Family Welfare Minister Jagat Prakash Nadda will launch nationwide celebrations to commemorate 10 years of Pradhan

यहाँ आकाशवाणी आइजोल है और आप सब सुन रहे हैं एफएम जवाई 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्यारे श्रोताओं, मैं हूँ आपके आज अनुभवी और जी हाँ, आज के शाम फिर से आप लोगों के साथ बिताने के लिए यहाँ बैठी हूँ और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोगों को मेरा साथ पसंद आएंगे। और जी हाँ, जो जो मैं गीत प्ले करूँगी आप लोगों के लिए, वो आप लोगों को पसंद आएंगे और आप लोगों के दिल को भी बहलाएंगे। तो जी हाँ, मेरे प्यारे श्रोता, इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 5:02 हुए हैं और ये खंड रहेंगे 5:30 तक। तब तक हम सुनेंगे हिंदी का बहुत ही खूबसूरत गीत। तो हम शुरुआत करेंगे माँ जीरो फिल्म से और गीत की बोल है मेरा नाम। तो आइए सुनते हैं मेरा नाम।

तो जी हाँ मेरे प्यारे श्रोता, ये था ओए ओए, और ये गीत जो है ये बचपन में हम बहुत ही सुना करते थे। अब हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले गीत की ओर, लेकिन उससे पहले हम नजर डालेंगे आपके संदेशों की। और मुझे यहाँ मिला है हाँकते पाबिल खोतले आज नुबई लाई लम जी बैले जाने नी दूती हूँ नुआम तित्तका आई मन थे ना दूसंगना कला दूसंगना लांचुंग चे इन लपले ले तुर खा मिंग मोई ते अपी सी जिस का वी कुंग ते के वाला के ngai te ya kho khol shinga jela za mai tan khala ne rantia ngakte pabil khutli aapka bahut bahut shukriya agla geet jo hai wo hum bhi aapke liye samarpit karenge aur ji hame mere pyare shrota aap hame yun hi sandesh bhejte rahiyega kyunki aapke sandeshon bina ye hamara fm ka jo program hai ye adhura rehta hai to ji ha mujhe yahan mila hai ming moite ki aur se no point namaste dilti normally arantia aapko bhi meri aur se नमस्कार। और जी हाँ, मुझे यहाँ मिला है ललदिन पुया फल कौन वेंग लाई की और से आर जे प्ले ले तुर का नंगमा तान ले लो आई खवे जोंग जोंग तान ले आर जे जोंग जोंग तान ले कठिन ते वेंग शंग शंग मी ते तान रन तीनी ललदिन पुया फल कौन ही वेल छिनत मई तेरा। तो जी हाँ, आप लोगों को आपके संदेशों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम फिर आगे बढ़ेंगे हमारे अगले गीत की ओर, और हमारा अगला गीत होगा, अभी हमने सुना था ओए ओए, अब हमारा अगला गीत होगा के आवाज में जीतने के लिए। तो आइए सुनते हैं जीतने के लिए आप सभी लोगों के नाम।

तो जी हमें प्यार श्रोता, ये था हमको प्यार हुआ, बहुत ही खूबसूरत गीत है। अब हम फिर आगे बढ़ेंगे हमारे अगले गीत की ओर। और ये जो हमारा अगला गीत है, ये आज के इस खंड के हमारा आखिरी गीत होगा। और इसी गीत के साथ मैं आप सभी लोगों से विदा लूंगी और फिर आप लोगों के पास लौट के आऊंगी आज रात 6 बजे। तब तक आप हमारा इंतजार कीजिएगा और सुनते रहिएगा FM जवाई। इस खंड का हमारा आखिरी गीत होगा सोनू निगम के और प्रकृति कक्कर के आवाज में, तू ही न जाने। तो आइए सुनते हैं तू ही न जाने।

नमस्कार मेरे प्यारे श्रोताओं, आप सभी लोगों को आपकी आरजे नुबई की ओर से हमारा दूसरा खंड में फिर से स्वागतम। और जी हाँ मेरे प्यारे श्रोताओं, अब हम आपको इस खंड में बहुत ही सुंदर सुंदर गीत सुनाएंगे, जैसे कि छूकर मेरे मन को ले चले और समझौना, जैसे ये जो है फोर द्वारा गाया गया है। ये खंड रहेंगे 6:25 तक। और आप सभी लोगों को मैं कहना चाहूंगी कि आज रात 8:30 हमारा FB लाइव होगा, उस वक्त आप हमें देखिएगा लाइव द्वारा और अपना मीठे मीठे संदेश जो है वो भी भेजिएगा। तो आइए सुनते हैं इस खंड का सबसे पहला गीत, छूकर मेरे मन को, आप सभी लोगों के लिए। और ये लेस्ली लिविस की आवाज में है।

0: तो मेरे प्यारे श्रोता, कैसा लगा आप लोगों को ये गीत? अभी जो हमने गीत सुना था वो था एफर्टलेस लिलीविज द्वारा गाया गया और बहुत ही खूबसूरत गीत है। गीत की बोल है छूकर मेरे मन को। ये गीत जो है ये मैंने आप लोगों को बहुत कई बार बताए। ये गीत जो है ये बहुत ही पुराने फिल्म याराना फिल्म का गीत है और उस फिल्म में अभिनेता था अमजद खान और अमिताभ बच्चन, जिनकी याराना यानी कि जिनकी दोस्ती बहुत गहरे थे, और अभिनेत्री थी नीतू सिंह। बहुत ही अच्छा फिल्म है, आप लोग भी एक बार देखिएगा इस गीत को। तो जी हाँ मेरे प्यारे श्रोता, अब हम चलेंगे आपके संदेशों की और मुझे यहाँ एज इट साइलो सीज इट साइलो गतिले पलंग ती लो मतलब चुमा चार अतिर टेंगन लम दिखना लंग एज इट साइलो नुबैते ई लाइफ तो ना मेदा रेंग जा आरन तिया ओ लाइफ तो ना जानिन चु दारि अतले छन वे आ कन रन लाइफ अंग ओ ता चानिन कनिन इंटरेक्ट लेंगा तेरो एफबी थ्रू खान मो ने। तो जी हाँ मेरे प्यारे श्रोता, एलजेड साइलो को उनके संदेशों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अगला गीत जो है वो है हम एलजेड साइलो के नाम करेंगे और हमारा अगला गीत होगा अशांति और निवान्ति के आवाज में। गीत की बोल है दुनिया दुनिया। इस गीत को सुनते हैं और इस गीत को हम खास करके एलजेड साइलो के नाम करेंगे।
1: इस खेल में है पुतला अकेला। सोचो

जी हमें प्यार शादा ये था एफ फोर द्वारा गाया गया और गीत की बोला ले चले। अब हम फिर आगे बढ़ेंगे हमारे अगले गीत की और हमारा अगला गीत होगा अशांति और निवांति की आवाज में एथनिक वोमेन। और इस गीत को सुनने से पहले हम फिर नजर डालेंगे आपके संदेशों की और तो जी हाँ मेरे प्यारे श्रोता अब हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले गीत की और अगला गीत होगा शांति और निवांति की आवाज में एथनिक वोमेन। तो आइए सुनते हैं एथनिक वोमेन।

0: ये आकाशवाणी है, विशेष श्रृंखला मोदी सरकार के 12 साल के अंतर्गत आज सुनिए सूचना और प्रसारण, रेलवे तथा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रहे हैं पत्रकार शिशिर सिन्हा।
1: नमस्कार। 26 मई 2014, नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने करोड़ों भारतीयों की उम्मीदों और आकांक्षाओं के साथ सत्ता संभाली। तब से लेकर 12 वर्ष बीत चुके हैं और इन 12 वर्षों में देश की जनता ने दो बार और उन्हें अपना आशीर्वाद दिया। इस दौरान हमने कई

0: स्थितियां बहुत ही कठिन देखी। कोविड का दौर था, फिर हमारा रूस और यूक्रेन की लड़ाई का भी असर देखने को मिला और उसके बाद अब पश्चिम एशिया का संकट। लेकिन इन सब के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था 7% या उससे ज्यादा की दर से विकास करती रही। कैसे संभव हुआ? क्या कुछ रही कहानी? आगे क्या कुछ हो सकता है? इन्हीं मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है रेलवे, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना व प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: नमस्कार
0: सर। 12 वर्षों में आर्थिक जो परिस्थितियां रही, कई चुनौतियां भी थी, कई कठिनाइयां भी थी, लेकिन 7% या उससे ज्यादा की विकास दर को हम हासिल कर पाए। किस तरह से नीतियों ने इसमें मदद की?
1: इन 12 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की अर्थव्यवस्था को बहुत ही एक मैच्योर तरीके से हैंडल किया है। हम अगर आज से 12 वर्ष पहले 2014 में जाएं, 2014 में हमारा पूरा फाइनेंशियल सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर ऐसी अजब परिस्थिति में था कि सारी दुनिया में चिंता थी कि भारत जैसी बड़ी अर्थव्यवस्था फ्रेजाइल 5 में गिनी जाने लगी थी। बैंक्स के एनपीएस बहुत हाई थे, बैंकों की बैलेंस शीट्स एकदम प्रैक्टिकली फिनिश होने के कगार पे थी, कौन सा बैंक कब इम्प्लोड हो जाएगा, ऐसी परिस्थितियां थी। आते ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहले बैंक्स को बहुत सिस्टमेटिक वे में उनके एनपीएस कम करने का प्रोसेस चालू किया, कम से कम करीब 2,50,000 करोड़ के आसपास रिकैपिटलाइज किया बैंक्स की बैलेंस शीट्स को। बैंक्स को प्रॉपर एक हेल्दी कंडीशन में लेके आए, जो आज आप उसका रिजल्ट देख रहे हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक्स का प्रॉफिट हाईएस्ट लेवल पे है, एनपीएस लोएस्ट लेवल पे है। उसके बाद में एक इन्वेस्टमेंट का प्रोसेस चालू किया, फिर आया कोविड। कोविड का शॉक था, बहुत बड़ा शॉक था, सारी दुनिया ने झेला, भारत ने उस शॉक के दौरान भी प्रधानमंत्री जी की नीतियों के कारण एक इन्वेस्टमेंट ड्रिवन मॉडल स्टार्ट किया। उस इन्वेस्टमेंट ड्रिवन मॉडल के कारण जो पहले करीब करीब 30 बिलियन डॉलर के आसपास इन्वेस्टमेंट होता था, आज 130 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट है देश में। इन्वेस्टमेंट जाता है फिजिकल, डिजिटल और सोशल इंफ्रा में, और उसका रिजल्ट बहुत अच्छा दिखाई देता है। आज हम देखें, चाहे कोई भी सेक्टर हम ले, एयरपोर्ट्स, नंबर ऑफ द एयरपोर्ट्स डबल हो गए, हाईवेज 58,000 किलोमीटर बने, नई रेलवे ट्रैक्स 36,000 किलोमीटर बनी, रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन 99% कंप्लीट हुआ। कंपेयर करें यूके से तो मेरे ख्याल से लेस देन 50% है। कई दूसरे देशों के कंपैरिजन में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आई, उसका देश में एक प्रभाव पड़ा, प्रोडक्टिविटी बढ़ी, लोगों की सुविधाएं बढ़ी, इंडस्ट्रीज को और ज्यादा ग्रो करने में मदद मिली। साथ ही साथ प्रधानमंत्री जी ने बहुत एक फोकस दिया इंक्लूसिव ग्रोथ। भारतीय जनता पार्टी का मूल विचारों में से एक विचार है अंत्योदय का विचार। इसमें प्रधानमंत्री जी ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत से इस पे ध्यान दिया, और जब भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर उन्होंने जिम्मेदारी संभाली तो जनधन अकाउंट हो, महिलाओं को सम्मान देने के अधिकार के साथ जो टॉयलेट्स का कंस्ट्रक्शन हो, पक्के घरों का निर्माण हो, हर घर नल से जल पहुंचाने का भागीरथी संकल्प हो, ये ऐसे बड़े बड़े काम हाथ में लिए और उनको डिलीवर सक्सेसफुली किया कि सबसे बड़ा इंक्लूसिव ग्रोथ का पूरे विश्व में उदाहरण है अपने पास। मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस किया और इनोवेशन पे फोकस किया और बहुत बड़ा सिंप्लीफिकेशन किया। तो इस तरह की वेल थॉट थ्रू स्ट्रेटेजी के कारण आज भारत 6-8% के ग्रोथ ब्रैकेट में कंसिस्टेंटली रहेगा।
0: और अब जो हम कहते थे कि फ्रेजाइल 5 में है, अब वो कहीं पीछे रह गया है। क्योंकि आप रेलवे का कार्यभार काफी समय से संभाल रहे हैं और मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में करीब 56 परियोजनाओं की मंजूरी दी गई, जिसमें लगभग 2,38,000 करोड़ रुपए का निवेश है। हम कहते हैं कि जब कभी भी किसी भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है उसका एक मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है, यानी कि आप 1 रुपया खर्च करते हैं तो 3 या 4 रुपए तक उसका फायदा देखने को मिलता है। रेलवे की परियोजनाओं से जो बदलाव हुआ है उसे आप किस तरीके से परिभाषित कर दें?
1: बड़ा फंडामेंटल चेंज आया है। अगर आप 2014 से पहले देखें तो एक साल में 700-800 हजार किलोमीटर इलेक्ट्रिफिकेशन होता था, आज 6,000-7,000 किलोमीटर इलेक्ट्रिफिकेशन साल का करके करीब करीब पूरे देश के रेलवे नेटवर्क को 99.4% इलेक्ट्रिफाई कर चुके हैं। 70,000 किलोमीटर के आसपास ट्रैक्स को अपग्रेड किया, जो पुरानी पटरियां थी, हालत बहुत खराब थी, स्लीपर्स टूटे हुए रहते थे, उन सबको रिप्लेस करके करीब 70,000 किलोमीटर को रेलवे ट्रैक्स को अपग्रेड किया। 36,000 किलोमीटर नए रेलवे ट्रैक बने, 1,300 स्टेशन का पुनर्निर्माण, नव निर्माण हो रहा है। 1,300 स्टेशन में से करीब करीब 250 स्टेशन कम्प्लीट हो चुके हैं, इस साल के अंत तक 500 स्टेशन कम्प्लीट हो जाएगी। 5,000 किलोमीटर रेलवे ट्रैक का निर्माण एक वर्ष में करना, मैंने स्विट्जरलैंड का रेलवे नेटवर्क है 5,000 किलोमीटर का, पूरा स्विट्जरलैंड के रेलवे नेटवर्क के बराबर का रेलवे नेटवर्क एक साल में ऐड करना। कई वर्षों पुराने जो प्रोजेक्ट्स पड़े थे, जिनको माननीय प्रधानमंत्री जी का जो प्रगति का मैकेनिज्म है, जिसमें हर महीने वो जो प्रोजेक्ट्स रुके हुए होते हैं देश भर में, वो उन पे ध्यान देते हैं, उनका रिव्यू करते हैं चीफ सेक्रेटरी डिपार्टमेंट उन सबके साथ मिलकर, तो प्रगति मैकेनिज्म के कारण बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आगे आए।

0: ओवरऑल बहुत बड़ा चेंज आया। कई प्रोजेक्ट जैसे ये चिनाब का ब्रिज अगर आप देखते हैं, तो चिनाब के ब्रिज को तो लोगों ने एक तरीके से राइट ऑफ भी कर दिया था कि ये बन ही नहीं सकता, और बारामूला से श्रीनगर तक ही रेलवे लाइन का और जम्मू से कटरा तक ही रेलवे लाइन को करके एक तरीके से अबैंडन सा ही कर दिया था इस प्रोजेक्ट को। प्रधानमंत्री जी ने इसको कम्प्लीट किया।
1: सर, हम लोग जब प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं तो दुनिया भर में एक नीति अपनाई जाती है, उसको हम लोग ट्रिपल पी कहते हैं, पीपल, प्लैनेट एंड प्रॉफिट। हमने आपके कैबिनेट ब्रीफिंग में देखा कि जब भी आप किसी परियोजना का ऐलान करते हैं तो आप प्लैनेट और सस्टेनेबिलिटी के ऊपर काफी जोर देते हैं, तो क्या ये समझा जाए कि अब गवर्नमेंट ने भी जो है ट्रिपल पी को पीपल, प्लैनेट और प्रोडक्टिविटी के फॉर्मूले में बदल दिया है?
0: ये आपने बहुत अच्छा नाम दिया, जरा वापस बताएं क्या कहा आपने?
1: पीपल, प्लैनेट और प्रोडक्टिविटी।
0: प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छा नाम दिया। जनरली पीपीपी मैंने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कहते हैं, आपने इसे अच्छा नाम दिया है। डेफिनेटली यस। देखिए, रेलवे सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस 95% लेस है कंपेयर टू दी हाईवे सेक्टर। इसलिए बहुत सारे देशों ने अपना इन्वेस्टमेंट बहुत सारा हाईवे से शिफ्ट करके रेलवे की तरफ किया है, चाहे जापान हो, चाहे चाइना हो, चाहे कोरिया हो, चाहे स्विट्जरलैंड हो, चाहे जर्मनी हो, बहुत सारे देशों ने अपना इन्वेस्टमेंट का फोकस जो आपने कहा प्लैनेट फ्रेंडली कनेक्टिविटी के प्रोजेक्ट्स में किया है, और भारत में भी इसका बेनिफिट भी साफ दिखाई देता है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आते ही जो रेलवे के इलेक्ट्रिफिकेशन का एक बहुत बड़ा संकल्प लिया, उसका रिजल्ट आज दिखाई देता है। आज वेस्ट एशिया क्राइसिस के कारण जो बहुत सारा मिटिगेशन उसका रेलवे के कारण हो पाया, क्योंकि इलेक्ट्रिफाइड है रेलवे पूरी, और इलेक्ट्रिसिटी पूरी भारत में हम स्वयं प्रोड्यूस करते ही है, आत्मनिर्भर है उसमें पूरी तरह से। तो चाहे गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन हो या पीपल ट्रांसपोर्टेशन हो, वी आर एबल टू डू इफेक्टिवली विद इलेक्ट्रिफाइड रेलवे।
1: सर, चूंकि आपके पास एक मंत्रालय है इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी, और इसमें अगर मैं एक, वैसे तो हर उपलब्धि अपने आप में महत्वपूर्ण है, लेकिन सेमीकंडक्टर एक ऐसा है, सेमीकंडक्टर मिशन के जरिए जो उपलब्धि हासिल हुई है उससे किस तरह का बदलाव आप, चूंकि कहते हैं कि वो भी एक मल्टीप्लायर इफेक्ट है, चाहे वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की हम बात करें, चाहे एविएशन इंडस्ट्री की बात करें, हर इंडस्ट्री के लिए उसमें सपोर्ट जरूरी होता है, वहां पर प्रगति को आप किस तरीके से मापते हैं?
0: सेमीकंडक्टर फाउंडेशनल इंडस्ट्री है, और 1960 से भारत में प्रयास चल रहा था, 1962 से भारत में प्रयास चल रहा था सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को लाने का। प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी ने, इंदिरा जी ने, राजीव गांधी जी ने, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने, सबने प्रयास किए, आखिर सफलता मिली मोदी जी को। प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने जब सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के बारे में प्रेजेंटेशंस लेने चालू किए थे, उनका बहुत स्पष्ट था कि हमें इकोसिस्टम पूरा बनाना है, और प्रधानमंत्री जी का यह भी बहुत स्पष्ट था कि हमें 20 साल का सोचना है, हमें शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए नहीं सोचना है। तीसरा, उन्होंने कहा था कि बहुत ध्यान रखना कि इसमें टैलेंट डेवलपमेंट पे पूरा फोकस है। ये तीन चीजें उन्होंने मूल रूप से हमको गाइडेंस दी थी, इसीलिए सेमीकंडक्टर मिशन जब चालू किया इकोसिस्टम पे फोकस दिया, केमिकल्स, गैसेस, इक्विपमेंट, ये सब के सब इसमें इंडस्ट्री के जितने इकोसिस्टम प्लेयर्स है वो ध्यान से आए। सेकेंड, टैलेंट पे बहुत फोकस किया। टैलेंट में 324 यूनिवर्सिटीज हैं जहां पर मोस्ट मॉडर्न डिजाइन टूल्स में, सेमीकंडक्टर के डिजाइन टूल्स में स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दी जाती है। ये इसका उदाहरण है आपके सामने। देखो, सिलचर, चेंबूर, इंदौर, ग्वालियर, शिवपुर, जम्मू, जालंधर, रोपड़, धनबाद, राउरकेला, मेघालय, जम्मू, कैलिकट, पूरे देश भर के स्टूडेंट्स के डिजाइन की हुई है चिप्स। ये चिप्स स्टूडेंट के डिजाइन की हुई, स्टूडेंट्स के द्वारा डिजाइन की हुई चिप्स को सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी में मैन्युफैक्चर किया, और स्टूडेंट्स ने उनको वापस बोर्ड में टेस्ट करके, सर्किट में टेस्ट करके उसका यूज भी किया। हाल ही में डेवोस में मैंने सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के सारे लीडर्स जब बैठे थे, उनको पूछा दुनिया भर में कितनी यूनिवर्सिटीज होगी जहां पे कैडेंस, सिनॉप्सिस जैसे टूल्स को यूज, स्टूडेंट्स कह सकते हैं कि हमने चिप डिजाइन की और मैन्युफैक्चर की, 20 से ज्यादा नहीं गिन पाए।
1: तो अब अगले मैं 2 वर्ष में कहूं तो सेमीकंडक्टर में भारत की स्थिति आप कहां देखते हैं?
0: बहुत सिग्निफिकेंट जंप आया है। विद इन 4 ईयर्स जो कॉमर्शियली प्रोड्यूस्ड चिप्स हमारी, ये माइक्रॉन के प्लांट से प्रोड्यूस की हुई, ये केन्स के प्लांट से, 28 फरवरी और ये 31 मार्च, ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने इनॉग्रेट किए थे ये दोनों प्लांट्स। तो मात्र 4 वर्षों में 12 प्लांट प्रोडक्शन स्टार्ट कर देना, डिजाइन का इकोसिस्टम बनना, टैलेंट का पूरा पाइपलाइन रेडी होना, और अगला जो सेमीकंडक्टर मिशन होगा इसमें हमारा फोकस रहेगा डिजाइन को नंबर 1 प्रायोरिटी देना, मशीन मैन्युफैक्चरर्स को बुलाना, केमिकल और गैस मैन्युफैक्चरर्स को बुलाना, और फैब और एटीएमपी यूनिट्स और आएंगे। तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम जिस तरह का एफर्ट अभी लगा है और जो सक्सेस अभी तक मिली है, उससे लगता है कि सारी दुनिया भारत को एक ट्रस्टेड पार्टनर की तरह देखती है।
1: सर, एक चीज हमने और भी देखा कि जो पीएलआई इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक के लिए आपने किया, और उसका एक सबसे ज्यादा बड़ा फायदा हमें मोबाइल हेडसेट के मामले में देखने को मिला। एक ऐसा भी दौर था कि जब भारत में हर मोबाइल फोन की बड़ी तादाद जो है वो इम्पोर्टेड हो

0: होता था या मेड इन कहीं और होता था। अब हम मेड इन इंडिया और असेंबल्ड इन इंडिया की बात करें तो ये जो पीएलआई स्कीम है ये मोबाइल हैंडसेट और इलेक्ट्रॉनिक के मामले में किस तरीके से योगदान किया, वहां पर हम आगे का सफर कैसे देख रहे हैं?
1: बहुत फायदा हुआ। सबसे पहले तो जो फिनिश्ड प्रोडक्ट्स थे उसकी मैन्युफैक्चरिंग चालू की, फिर कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग चालू हुई। और कंपोनेंट की मैन्युफैक्चरिंग में बहुत प्रिसीजन का काम होता है। ये एक क्लासिक एग्जांपल है, आप इसको देखें अगर
0: जी,
1: तो आपको ये एक फुल स्टील का ब्लॉक दिखेगा, राइट,
2: तो कोई कहीं कट या कुछ नहीं दिखेगा।
1: ये एक्चुअली इतना प्रिसीजन का मैन्युफैक्चरिंग है, ये एक्चुअल में इतने ज्यादा इसमें कट्स लगे हुए थे इसमें, राइट, इतना प्रिसीजन का काम था। जो सिंगल सॉलिड ब्लॉक दिखता था वो सिंगल सॉलिड ब्लॉक नहीं है। तो इस प्रिसीजन का काम जो स्टूडेंट्स सीख पाते हैं वही मैन्युफैक्चरिंग में जाते हैं आके, इस तरह का काम है। तो अब कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग में आफ्टर दी सक्सेस ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट्स एंड मॉड्यूल्स, कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग में 75 फैक्ट्रीज ऑलरेडी अप्रूव हो गई है जिसका कंस्ट्रक्शन चल रहा है, करीब 250 फैक्ट्री होंगी। और कंपोनेंट का एक्सपोर्ट करना भी भारत ने चालू कर दिया है। प्रिसीजन मैन्युफैक्चरिंग के मैं कई एक एग्जांपल आपको दूंगा। रेलवे का जो प्रोपल्शन होता है, ट्रेन का जो मोस्ट कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी वाला पार्ट है वो प्रोपल्शन है, रेलवे की इलेक्ट्रॉनिक्स। लास्ट ईयर वी स्टार्टेड एक्सपोर्टिंग रेलवे प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी टू जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड एंड यूएस। तो ये बहुत बड़ा चेंज है। प्रधानमंत्री जी का जो मेक इन इंडिया का थ्रस्ट है, जो फोकस है, वो फोकस अब रिजल्ट दिखाने लगा है जब ऐसी कॉम्प्लेक्स चीजें भारत से एक्सपोर्ट होने लगी।
0: तो अगले, अगर मैं पीएलआई के अगले चरण की बात करूं तो उसमें हम क्या कुछ देख सकते हैं, क्या कुछ उम्मीद कर सकते हैं?
1: बहुत फोकस आएगा कंपोनेंट्स को यूज करके भारत में एक्स्ट्रा डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन करना, डिजाइन की कैपेबिलिटीज बढ़ना, और क्वालिटी में जो भारत ने एक पहचान बनाई है उसको एक नए लेवल पे लेके जाना, सिक्स सिग्मा लेवल पे लेके जाना।
0: सर, अगर मैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर डिस्कशन की बात करूं तो दो ऐसे बिल हैं जो एक लैंडमार्क लेजिस्लेशन के तौर पे कहे जा सकते हैं। एक जैसे आपका डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन है और दूसरा जो है रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट। ये दोनों कानून को लेकर के प्रतिक्रिया जैसी भी रही हो, आप इसके काफी मुखर तरीके से, आपने खासतौर पर ऑनलाइन गेमिंग की मैं बात करूं कि उस पर रियल मनी वाले ऑनलाइन गेमिंग को लेकर के आपने काफी उस पर अपनी बात बहुत ही मजबूती के साथ रखा था, इन दोनों लेजिस्लेशन को आप किस तरीके से देखते हो और इनके जरिए पूरी इंडस्ट्री में किस तरह का बदलाव हुआ है वो अगर बता सकते?
1: ऑनलाइन मनी गेमिंग सोसाइटी के लिए बहुत बड़ा एक अभिशाप बन के उभरा था। हजारों सुइसाइड्स, परिवार की सारी इनकम एक गेम में नष्ट हो जाना। ऑनलाइन बेटिंग, ऑनलाइन गेमिंग, ऑनलाइन मनी गेमिंग वॉज अ बिग बिग बिग प्रॉब्लम फॉर दिस सोसाइटी। इसीलिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत कठोर निर्णय लिया और ऑनलाइन मनी गेमिंग को बैन किया। इसका बहुत बेनिफिट मिला है। अभी हाल ही में टाइटन इंडस्ट्रीज के सीईओ का इंटरव्यू था कि ऑनलाइन मनी गेमिंग के बैन के कारण बहुत सारा जो लोग पैसा वेस्ट कर देते थे मनी गेमिंग में, वो पैसा आज अपने परिवार के लिए अच्छे सामान खरीदने के लिए लगा रहे हैं, घर में बच्चों के लिए, पढ़ाई के लिए, हेल्थ केयर के लिए, घर बनाने के लिए, उस सब में लग रहा है। इसी तरह से कई एग्जांपल्स है। एक इंडस्ट्री है जिसमें 30,000 लोग काम करते हैं, उनके सीईओ मुझे बता रहे थे कि महीने का पहला हफ्ता करीब करीब ऐसा होता था जिसमें व्यक्ति ने जितनी सैलरी ली वो सारी सैलरी ऑनलाइन मनी गेमिंग में लूज कर देता था, और उसके बाद में एचआर डिपार्टमेंट को फोन करके किसी तरीके से परिवार कैसे चलाए उसकी व्यवस्था में चिंता रहती थी। मतलब उनका कहना था कि उनके जान पहचान के लोगों में महीने में एक सुसाइड होता था गेमिंग के कारण। वो सारी चीजें फिनिश हो गई। अभी हाल ही में एक जगह से प्रवास से लौटने के टाइम में इंडिगो का कर्मचारी मुझे मिला, उसने कहा कि मोदी जी को धन्यवाद देना कि ऑनलाइन मनी गेमिंग आपने बंद कर दी, कि मुझे 35,000 रुपए मिलती थी सैलरी, पूरे के पूरे 35,000 रुपए मैं गेमिंग में गंवा देता था, और अब मेरा परिवार, मेरा छोटा सा बच्चा है, उसने कहा मेरा शायद 3 या 4 साल का बच्चा है, अब परिवार हमारा खुश है।
0: लेकिन
1: इस तरह के कई एग्जांपल्स।
0: लेकिन कई बार ये भी बात कही जाती है कि वीपीएन के जरिए और उन सब के जरिए,
1: ये बात ठीक है आपकी,
0: तो आप कैसे उस पर रोक लगा?
1: ये बात ठीक है। देखो, जब भी इस तरह के कड़े कठोर कानून आते हैं तो 90% प्रॉब्लम सॉल्व होती है, लेकिन कुछ हद तक लोग गैर कानूनी तरीकों से करने का प्रयास करते हैं, चाहे किसी भी सेक्टर में ले लो, चाहे ड्रग्स का ले लो, चाहे किसी भी तरह के सेक्टर को ले लो। तो इसमें प्रयास हमारा लगातार रहता है कि इस तरह की जो इलीगल साइट्स हैं उनको बैन करने का। अब तक करीब करीब 10,000 के आसपास इलीगल साइट्स को बैन किया जा चुका है।
0: और सर, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन को लेकर के किस तरीके की?
1: बहुत ही वेल थॉट थ्रू बिल है ये, जिसमें 7 प्रिंसिपल्स के बेसिस पे सिटीजन्स के डिजिटल डेटा को, डिजिटल पर्सनल डेटा को प्रोटेक्शन करने का मेथड है। इंडस्ट्री के साथ बातचीत करके उसको बहुत सिस्टमेटिक तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, और दुनिया भर में इस बिल के कारण भारत की एक नई पहचान भी बनी, क्योंकि जो प्रिस्क्रिप्टिव मेथड यूरोप ने लगाया उसके कारण उनका इनोवेशन फिनिश हुआ। भारत के इस बिल में इस तरह से बैलेंस आया इनोवेशन और रेगुलेशन में।

0: जिससे कि इनोवेशन भी फ्लरिश कर सके और रेगुलेशन भी प्रॉपर लेवल पे हो सके।
1: अगर मैं आखिरी में आपसे पूछूं कि हमने शुरुआत करी फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर से, अगर मैं डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं तो अगले 3 से 5 सालों में हम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या कुछ और बदलाव देखेंगे और डिजिटल इंडिया किस तरीके से आगे बढ़ेगा, अगर उसकी रूपरेखा पेश कर सकें आप तो?
0: टेलीकॉम सेक्टर में बड़े बदलाव आने वाले हैं। टेलीकॉम सेक्टर में जो सबसे बड़ा चेंज आएगा वो चेंज आएगा रेजिडेंट AI। एक टेलीकॉम टावर करीब 2000 पैरामीटर्स लेता है जिसपे वो काम करता है एक साथ। उन पैरामीटर्स को अभी जो एल्गोरिदम्स होती है वो एल्गोरिदम्स बड़ी प्रिस्क्रिप्टिव टाइप की एल्गोरिदम्स होती है, किस सिचुएशन में क्या करना है उस पर डिफाइंड होती है। अगर उसमें AI लगता है हर टावर के अंदर तो सिग्निफिकेंट लेस पावर कंजम्पशन हो पाएगा, सिग्निफिकेंटली बेटर कॉल क्वालिटी हो पाएगी और डिजिटल इंडिया के नेक्स्ट फेज में टेलीकॉम का जो रोल है वो रोल और टेलीकॉम में AI का रोल वो बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा।
1: लेकिन ये भी कहा जाता है कि AI बहुत सारी नौकरियां ले सकता है, तो जब हम डिजिटल इंडिया के एक्सपेंशन की बात करेंगे, AI की इम्पोर्टेंस की बात करेंगे, हमारे लिए एक बड़ी चुनौती नौकरियां नहीं रहेंगी?
0: जितनी IT सेक्टर की इंडस्ट्रीज है उनके साथ हम लगातार एंगेज्ड हैं, किस तरह से नए प्रकार के स्किल्स क्रिएट किए जाए, नए प्रकार की ट्रेनिंग क्रिएट की जाए। अभी हाल ही में NASSCOM के माध्यम से IT इंडस्ट्री ने अपना नया कोर्स का पूरा करिकुलम बना के दिया है जिसको AICT के माध्यम से लागू करेंगे, जिससे कि टेक्नोलॉजिकल चेंज के कारण जब भी डिसरप्शन आता है, जब भी परिवर्तन आता है, तो उस समय में अगर इंडस्ट्री और एकेडेमिया दोनों आपस में मिल जाए तो उस चेंज को बहुत स्मूथली कर सकते हैं। तो वही प्रयास है IT इंडस्ट्री के साथ मिलकर नए तरह के जो जॉब्स क्रिएट होंगे उन जॉब्स के लिए हमारे युवाओं को तैयार करने का प्रयास है।
1: अश्विनी वैष्णव साहब, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: नमस्कार।
2: विशेष श्रृंखला मोदी सरकार के 12 साल के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे सूचना और प्रसारण रेलवे तथा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रहे थे पत्रकार शिशिर सिन्हा। ये आकाशवाणी है, विशेष श्रृंखला मोदी सरकार के 12 साल के अंतर्गत। अब सुनिए संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रही हैं रीमा पराशर।
3: नमस्कार। 26 मई 2014 वो दिन था जब सिर्फ सरकार नहीं बदली थी बल्कि करोड़ों भारतवासियों की जो आकांक्षा थी, जो सपने थे, वो भी ऐसा लगा था पूरे होने की कगार पर अब आगे बढ़ रहे हैं। और इसीलिए अब जब 12 साल पूरे हो रहे हैं तो फिर ये तो एक सवाल बनता है ना कि भाई 12 साल में इस देश में ऐसा क्या बदलाव आया कि लोग मोदी मोदी मोदी मोदी कर रहे हैं? ऐसी क्या बात हो गई कि नरेंद्र मोदी हर राज्य में विजय पताका फहराते जा रहे हैं, लहराते जा रहे हैं, और भारत जो है वो विश्व स्तर पर भी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अब अपना एक अलग मुकाम रखकर लाया है। चलिए इस बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज बेहद ही खास मेहमान है, और वो खास मेहमान जो कि जब नॉर्थ ईस्ट में बात होती थी ना कि कौन चेहरा है तो एक चेहरा सबसे पहले सामने आता था, किरण रिजिजू जी का, और वो अब अल्पसंख्यक मामलों के भी मंत्री हैं, संसदीय कार्य मंत्री भी हैं, इससे पहले कानून मंत्री रह चुके। तो एक तरीके से 2014 से लेकर अब तक का सफर इन्होंने लंबा तय किया है। बहुत बहुत स्वागत है रिजिजू जी आपका।
4: धन्यवाद।
3: और 12 साल की ये जर्नी, आप इस जर्नी को कैसे देखते हो?
4: ये जर्नी भारत का इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि जब मोदी जी प्राइम मिनिस्टर के लिए नॉमिनेट किए गए थे, मंत्रिमंडल का शपथ लेने से पहले उन्होंने हम 44 लोगों को बुला करके पहला संदेश जो दिया था वो मुझे आज भी याद है। मोदी जी ने कहा था कि हम लोग सिर्फ सत्ता में कुर्सी ऑक्यूपाई करने के लिए नहीं आया है, हम देश का दशा दिशा और जनता गरीब लोगों के लिए एक बहुत बड़ा बदलाव लेने के लिए हम आए हैं। तो तब से लेकर एक एक नीति आप देखेंगे तो भारत को एक नई मोड़ पर लेकर के 2014 के बाद हमने काम शुरू किया है, और गवर्नेंस शासन करने का प्रक्रिया है उसमें बदलाव किया है, और अब तो एक आम सा बात हो गया है कि भारत सरकार कोई भी कदम उठाते हैं उसका लाभ तुरंत जनता तक मिल जाता है। नहीं तो पुराने दिनों में कांग्रेस के शासन के समय तो बातें बहुत होती थी, कई घोषणाएं भी होती थी, बजट में घोषणाएं, रेलवे बजट में।

0: नई प्रोजेक्ट का घोषणाएं और हर समय चुनाव में तो घोषणा ही घोषणा होते थे, गरीबी हटाओ नारा लगाना, ये एक फैशन से बन गया था उस जमाने में। लेकिन इन 12 सालों में सचमुच में जो काम हुआ है, मैं मानता हूं कि मोदी जी का कार्यकाल है ये सचमुच में भारत को फिर से एक महान देश और जो पुराने में भारत का एक नाम था उसको फिर से पुनर्जीवित और फिर से पुनर्स्थापित करने में कामयाब हुआ है।
1: आपने क्योंकि रिजिजू जी गरीबों वाली बात की ना, पहले का वो स्लोगन एक याद आता है कि जब एक रुपया भेजते थे 10 पैसे पहुंचते थे, आज 1 रुपया भेजते हैं तो कितने पैसे पहुंचते हैं?
0: आज तो जितना भेजता है उतना ही पहुंचते हैं, क्योंकि उस समय प्रधानमंत्री खुद ही सरेंडर हो गए थे। राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे और खुद ही सरेंडर करके बोल दिया कि 100 रुपया भेजता तो 15 रुपया पहुंचते हैं, 1 रुपया में 15 पैसे पहुंचते हैं। आज तो एक बटन दबाया केंद्र सरकार के ओर से कोई भी स्कीम घोषणा करके उसको सिर्फ बटन दबाना है, डीबीटी के माध्यम से लोगों के खाता में पहुंच जाते हैं और सारा स्कीम्स जो है समयबद्ध क्रियान्वित हो जाते हैं। इसलिए जो बदलाव आज देखने को मिला है, ऐसे ही सोचने से आपको पता नहीं चलेगा 12 साल पहले देश का हालत क्या था। जब कांग्रेस यूपीए सरकार थे तब हम भ्रष्टाचार से ग्रस्त होकर के, पॉलिसी पैरालिसिस होकर के, और गरीबों को सरकार का कोई भी कार्यक्रम तुरंत कुछ भी नहीं मिलते थे। तो इतना बदलाव जो आया है इसको चंद शब्दों में कहना तो मुश्किल है, मगर इतना तो कह सकता हूँ कि जो हमारा सरकार का थीम है सेवा सुशासन और गरीब कल्याण, तो गरीबों का कल्याण तो हुआ ही है, सेवा तो हम कर ही रहे हैं और सुशासन देश को भला हो रहा है, तो हर दृष्टि से हम कामयाब हैं।
1: तो आप कह रहे हो पॉलिसी पैरालिसिस, ये जो नारा और स्लोगन चला था उस वक्त मनमोहन सिंह सरकार के समय में, आज राहुल गांधी कॉम्प्रोमाइज पीएम का नारा चला रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि भाई आपने ऐसा किया तो अब कॉम्प्रोमाइज पीएम वो बोल रहे हैं।
0: कांग्रेस के समय में जो हालत था वो हमको बताने का कोई आवश्यकता ही नहीं है, देश के जिस आदमी का भी आप पूछो कांग्रेस जमाने में क्या हालत था, और कांग्रेस के खुद नेताओं से पूछो, कांग्रेस के नेता खुद कह रहे हैं कि कांग्रेस के जमाने में तो अमेरिका उसका मास्टर थे, चिदंबरम साहब खुद होम मिनिस्टर थे तो खुद ही बताया कि पाकिस्तान ने आतंकवादी हमला किया और भारत कुछ नहीं कर पाया क्योंकि अमेरिका ने वार्निंग दिया कि कुछ नहीं करना है। फिर चिदंबरम जी ने खुद भाषण दिया था पार्लियामेंट में जब हमारा सत्ता में आए, कहा कि आप डिजिटल इंडिया का बात करते हैं, गांव में गरीब लोगों को डिजिटल से क्या लेना देना है, और जो हमारा पेमेंट होता है यूपीआई के बारे में मजाक उड़ाया था कि गरीब जो सब्जी बेचते हैं सामान बेचते हैं उनका डिजिटल पेमेंट कैसे होगा,
1: वो बैंक के खाते का क्या करेंगे,
0: तो ये सारा चीज जो है वो तो कांग्रेस खुद ही कहते हैं। राजनीतिक दृष्टि पर कुछ भी आप कह लो लेकिन मालिक तो जनता है, तो इसलिए कॉम्प्रोमाइज तो पूरी तरीके से कांग्रेस के जमाने में कांग्रेस पार्टी ने देश को ही कॉम्प्रोमाइज करके रख दिया था। आज तो मोदी जी अपना निर्णय लेते हैं देश हित में और देश हित में किसी के दबाव में काम नहीं करते, तो राजनीतिक दृष्टि से कोई अगर कह देगा तो उसके ऊपर भारी पड़ेगा। स्पेशली कांग्रेस पार्टी तो कुछ कह नहीं सकते, उन्होंने लगभग 60 वर्ष इस देश को शासन किया और देश को बहुत गरीब राष्ट्र बना दिया था, सबको मालूम है हमारा इकोनॉमी हमारा पर कैपिटा इनकम कांग्रेस के जमाने में कितने नीचे थे। अब हम इतना तेजी से आगे बढ़ रहा है, मैं तो सपना देखता था उस जमाने में कि चाइना 8% 10% से ग्रोथ करते हैं, हम कब चाइना की तरह ग्रोथ करेंगे, और मोदी जी ने हमको चाइना से भी ज्यादा स्पीड में अपने इकोनॉमी का ग्रोथ पाथ को आगे लेके खड़ा कर दिया। तो ये सब देखिए, इसमें तो कोई भी भारतीय फख्र होगा कि मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री हमको मिले हैं जो भारत को एक विकसित भारत की ओर ले जा रहे हैं।
1: आपने क्योंकि चाइना की बात कही ना, तो नॉर्थ ईस्ट जहां से आप आते हैं वो समय और वो दौर भी हम लोग देखते थे कि जब नॉर्थ ईस्ट के लोगों को अपनी पहचान का संकट था, पहचान बताने में भी उनको घबराहट होती थी, दिल्ली तक आने में तो उनको बहुत समय लग जाता था, वो बदलाव भी देखा है क्या हमने?
0: बदलाव तो क्या कहेंगे, मैं ये कहूंगा कि ट्रांसफॉर्मेशन पूरा परिवर्तन हो गया है, बदलाव सिर्फ इंक्रीमेंटल बदलाव नहीं है ना, ट्रांसफॉर्मेटिव बदलाव आया है, क्रांतिकारी बदलाव आया है, क्योंकि जो दूर दराज के इलाके हैं वो तो दिल्ली से बहुत दूर महसूस करते थे। जैसे मैं अरुणाचल प्रदेश से आता हूँ, अरुणाचल के लोग दिल्ली जाने के लिए भी सोचना पड़ता था और दिल्ली वाले भी नहीं आते थे, अगर आते तो भी मेहमान की तरह आते हैं। आजकल तो चाहे लद्दाख हो चाहे मिजोरम हो अरुणाचल प्रदेश हो, सब जगह ट्रेन से कनेक्ट हो गए हैं, एयरपोर्ट से सबको कनेक्ट किया गया है और टनल बन रहे हैं, नए नए परियोजनाएं, हाईवे कितना बन गया है, जो 1 इंच हाईवे नहीं बने थे 12 साल पहले आज वहां चकाचक हाईवे बन गए हैं, लोग आराम से गाड़ी लेकर के आना जाना हो रहा है, गांव गांव मोबाइल

0: छात्रा लग रहा है क्या?
1: देखो जेन जी का तो ये शब्द पश्चिमी देशों से उन्होंने क्रिएट किया है, हम तो अपना पारंपरिक जो मानक है हम उसी से चलते हैं। फिर भी एक टाइटल दिया गया है नए युवाओं को, जो एक पर्टिकुलर वर्ग को जेन जी जो कहते हैं, वो आज 18 साल 20 साल 25 साल के लगभग उसमें ज्यादातर लोग हैं,
0: क्योंकि सबकी निगाह उन्हीं पर लगे। राहुल गांधी जेन जी से मिल रहे हैं, अखिलेश यादव जेन जी से मिल रहे हैं, सब जेन जी से।
1: राहुल गांधी जी हो या अखिलेश यादव जी हो, वो कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। लोकतंत्र में कुछ लोग तो विरोध रहेंगे ही, एक पक्ष होते हैं एक विपक्ष होते हैं, लेकिन आप दिल से अगर नहीं जुड़ेंगे तो कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। जैसे कि मैं उदाहरण के तौर पर आपको कहना चाहता हूं, राहुल गांधी जी लीडर ऑफ अपोजिशन है लोकसभा में, लगभग 50% वर्ष एक साल में वो विदेश में रहते हैं, वहां वो छुट्टियां मनाते हैं रिजॉर्ट में, छुपके कहीं कहीं जाते हैं, कभी कभी बताते भी नहीं है, और फिर जब एक बार आएंगे देश में और फिर एक स्टेटमेंट देंगे, मोदी जी को गाली देते हैं, फिर विदेश गायब हो जाते हैं, फिर वापस आएंगे मोदी जी को फिर दूसरा गाली देंगे, फिर विदेश चले जाते हैं। तो ये जो पार्ट टाइम वाला राजनीति है, उससे आप लोगों का दिल नहीं जीत सकते हैं और लोगों के अंदर आप नहीं घुस सकते हैं। हमारा तो नेता और हमारा पार्टी 24 घंटे हम तो देश के लिए और देश के जनता के बीच में हम रहते हैं।
0: ये विदेश वाला जो है, विदेश जाने में क्या बुराई है?
1: वो तो अच्छा है, अगर वो विदेश जाते रहे तो कांग्रेस का नैया जो है डूबते रहेंगे। राजनीतिक तौर पर हमको कुछ नहीं कहना है, अगर राहुल गांधी को राजनीति में कोई रुचि नहीं है और विदेश में ही उसका दिल है और अपने विदेशी दोस्तों के साथ ही अगर वहां दिल बहलाने के लिए विदेश में रहता है, हमारा क्या आपत्ति है? हम तो इसलिए कह रहे हैं कि वो कभी कभी वापस आते हैं भारत में, अपने देश में आकर के फिर गाली देते हैं, फिर गायब हो जाते हैं, चुनाव के बीच में भी वो विदेश चले जाते हैं, तो नुकसान तो कांग्रेस का है, हमारा क्या नुकसान है?
0: अब वो कांग्रेस पार्टी कहती है भाई सरकार आपकी, आप पता करो विदेश में वो क्या करते हैं क्या नहीं करते।
1: देखो, किसी का जिंदगी में कौन क्या खाता है पीता है, कहाँ रहते हैं, किसके साथ में वो घूम रहे हैं, इतना हमारा रुचि नहीं है। हमारा सिर्फ इतना तक सीमित ध्यान जाता है कि वो देश के विरोधी ताकतों के साथ में मिलना जुलना होते रहते हैं विदेश में, इससे हम आपत्ति है, हम उसको आपत्ति करते हैं।
0: आपको लगता है कि ये जो विदेश वाला राहुल गांधी का है, उसके बाद वो आते हैं पार्लियामेंट में फिर वो एक एजेंडा बोलते हैं, कहीं ना कहीं वही एजेंडा वो लेकर के आते हैं क्या?
1: जब पार्लियामेंट में बोलते हैं तो झलकते ही है, क्योंकि देश को कोसते हैं, देश के प्रधानमंत्री को कोसते हैं, तो उससे पता चलता है कि वो देश के विरुद्ध जो लोग काम करते हैं उनसे काफी इन्फ्लुएंस हुए हैं। उदाहरण के तौर पर जो राहुल गांधी जी कहते हैं पार्लियामेंट में, वो सेम चीज पाकिस्तान कहते हैं, और जो राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल और इन जैसे लोग जो भी नैरेटिव चलाते हैं, उसके तालियां पाकिस्तान में बजता है, तो ये तो कहीं ना कहीं एक तरीके से तो जुड़े हुए हैं। अब मैं इसको किस तरीके से समझाऊं देशवासियों को कि जो विपक्ष है वो भी तो देश के लिए सोचना चाहिए ना। विपक्ष का काम ये नहीं है कि देश के खिलाफ काम करे, वो सरकार को गाली दे सकते हैं, सरकार के खिलाफ उनका बोलने का अधिकार है, और लोकतंत्र में सरकार के खिलाफ मजबूती से अगर विपक्ष खड़ा रह करके निगरानी रखेंगे, कोई करप्शन हुआ है क्या, कहीं कोई नीति में भूल चूक हुआ है क्या, अगर उसमें विपक्ष हमला करते हैं तो ये तो स्वागत है, लेकिन कोविड का समय, ये इमरजेंसी समय है, तब भी प्रधानमंत्री को गाली देंगे, देश के खिलाफ काम करेंगे। और जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, देश गर्व है हमारा सेनाओं के, जो देश के प्रति उन्होंने जो बल दिखाया है उसको भी विरोध करते हैं, सवाल उठाते हैं, और अभी ईरान अमेरिका इसराइल का लड़ाई के चलते तेल गैस आने में कष्ट हो रहे हैं, ये तो एक तरीके से एक आपातकालीन टाइप का सिचुएशन हरमूज में पैदा हो गया है मिडिल ईस्ट में, तो उससे हमको दिक्कत हो रहे हैं, तो ऐसा में तो देश के साथ खड़ा होना चाहिए, ऐसा में भी देश का खिलाफ बोलते रहते हैं और मोदी जी का खिलाफ बोलते हैं। तो मेरा ये कहना है कि आमतौर पर विरोध जो है सरकार के खिलाफ आप जितना कर सकता है कर सकते हैं, उसमें लोकतंत्र में कोई रुकावट नहीं है, लेकिन जब इमरजेंसी सिचुएशन होता है, जब एक विशेष परिस्थिति होता है, ऐसे समय में सबको एक साथ खड़ा होना होता है। जैसे जब 1962 में लड़ाई हुआ चीन के साथ, तो पूरा देश एकजुट खड़ा हुआ, कम्युनिस्ट पार्टी में टूट हुआ, एक ग्रुप जो है चीन का समर्थन में आया, वो कम्युनिस्ट भाग हो गया। 1965 हो, 71 हो, या कारगिल के समय में भी हो, हर समय इस तरीके के जब विशेष परिस्थिति आते हैं, जब देश किसी से लड़ रहे हैं, दुश्मनों के साथ में देश मुकाबला कर रहे हैं, ऐसा समय में पूरा देश एकजुट खड़ा रहना चाहिए, ये तो सब मानते हैं, लेकिन पहली बार मैंने देखा है ऐसा विपक्ष आज का दिन

0: में पैदा हो गया है कि देश किसी विपत्ति से जूझने के लिए, कोई आपातकाल स्थिति को नियंत्रण करने के लिए जब काम कर रहे हैं, ऐसे समय में सरकार के खिलाफ, देश के खिलाफ बोलना शुरू कर देते हैं। इससे मैं बहुत दुखी हूँ।
1: संसद में आपको लगता है ये जो बर्ताव है वो कंट्रोल नहीं हो पा रहा है इतने समय में?
0: देखिए, राहुल गांधी जी को कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल है, मुझे लगता है। मैं इतने सालों से उसको देख रहा हूँ। पहले तो मैंने सोचा था कि वो हल्के फुल्के से इधर उधर घूमते रहते हैं, अनाप शनाप बात करते रहते हैं, लेकिन जब वो नेता प्रतिपक्ष बने तो मैंने सोचा कि वो नियंत्रित होंगे, लेकिन और बिगड़ गया। नेता प्रतिपक्ष होने के बाद तो और भी उसका भाषा पूरा बिगड़ गया है। अब तो पार्लियामेंट में जब बोलते हैं तो नियम के बाहर बोलते हैं और गाला गाली पे उतर जाते हैं। दिन भर नारा लगाते रहते हैं अपना एमपीओ को, जो पार्लियामेंट हाउस के बाहर गेट में खड़ा करके वही दिन भर वहां तमाशा कराते रहते हैं। तो एमपी इसके लिए नहीं आया, एक नॉर्मल सी कर दिया। अब कांग्रेस के एमपी लोग भी ये सोचने लग गया कि वो तो पार्लियामेंट में इसलिए चुन के आए कि वो इस तरह का हरकतें करना है, उसी को अपना दायित्व मान लिया है। संसद के अंदर में बोलना, अपना कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में बोलना और सरकार का नीति में खामियां है तो उसको उजागर करना, और फिर जहां जरूरत है सुझाव भी दे सकते हैं या आप उसको क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं। लेकिन वो संसद में बोलना, वहां प्रदर्शन करना, ये सारा चीज जो है लोग देख रहे हैं ना, लोग देख रहे हैं कि कांग्रेस का हरकत कैसे है।
1: मोदी जी ने जो कोई एक बात आपसे इन 12 सालों में कही हो जो आपको हमेशा याद रहेगी?
0: मुझे तो इतना बातें प्रधानमंत्री जी की ओर से सुझाव, निर्देश या हमको गाइडेंस देते रहते हैं तो एक बोलना मुश्किल है, लेकिन एक बात मैं कह सकता हूं कि देश हित में जो भी आपको दायित्व मिला है उसको पूरी तरह से निभाना है, इसलिए हम अपना ड्यूटी से प्रतिबद्ध हैं।
1: बहुत बहुत शुक्रिया किरण जी, आपने इतनी बेबाकी से ये सब बात कही। और जाहिर तौर पर देखिए 2014 से अभी तक की ये जो जर्नी है, इसीलिए हमने इसको भारत रीलोडेड का नाम दिया है, क्योंकि इस वक्त नए भारत की बात हो रही है और नए भारत का जो सपना भारतवासियों ने देखा था वो कितना पूरा हुआ, इस पर हमसे खास बातचीत की। नमस्कार।
0: नमस्कार जी।
2: विशेष श्रृंखला मोदी सरकार के 12 साल के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू के साथ विशेष साक्षात्कार कर रही थी रीमा पराशर।

नमस्कार आप सभी लोगों को आपकी आरजे न्यूबोई की ओर से यहाँ फेसबुक लाइव पे स्वागतम। और जी हाँ, आज रात हमारा हिंदी का लाइव शो चल रहा है। इस समय हिंदी का लाइव शो चलेंगे इस वक्त 8:30 से लेकर 9 बजे तक। तब तक मैं आप लोगों को हिंदी का बहुत ही खूबसूरत गीत सुनाऊंगी और आप सभी लोगों को हमारा साथ देने के लिए मैं यहाँ पर आप सभी लोगों से गुजारिश करना चाहूंगी कि आप हमारे यहाँ पर साथ दें और हमें आपकी मीठे मीठे संदेश भेजिएगा। तो जी हाँ मेरे प्यारे श्रोता, इस खंड का हमारा सबसे पहला गीत होगा ऑथम्स द्वारा गाया गया गीत और गीत की बोल है सुकून। तो आइए सुनते हैं सुकून आप सभी लोगों के लिए।

तो जी हाँ मेरे प्यारे श्रोता, अभी जो हमने गीत सुना था वो था ऑथम्स द्वारा गाया गया गीत, और गीत की बोल है सुकून। अब हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले गीत की ओर, और हमारा अगला गीत जो है वो है आप लोगों के लिए, और ये गीत जो है परदेसी परदेसी, और ये गीत जो है राजा हिंदुस्तानी फिल्म का गीत है। तो आइए इस गीत का आनंद लेते हैं और सुनते हैं परदेसी परदेसी आप सभी लोगों के लिए।

0: तो जी हाँ मेरे प्यारे श्रोता, ये था परदेसी परदेसी और इस गीत को लल पेखलू फनाई ने यहाँ पर रिक्वेस्ट की थी। अब हम फिर आगे बढ़ेंगे हमारे अगले गीत की ओर और हमारा अगला गीत होगा टाइगर जिंदा है फिल्म का गीत और गीत की बोल है दिल दिया गल्ला। बहुत ही खूबसूरत गीत है और चलिए आइए इस गीत का आनंद लेते हैं और ये गीत जो है मैं आप सभी लोगों के लिए डेडिकेट करूंगी। तो आइए सुनते हैं दिल दिया कलान।
1: और आज फरमाइश आई है बॉर्डर पार से हमारे दोस्त शम्स आलम की, जिनकी बेगम साहिबा सामिया जहरा उनसे नाराज बैठे हैं। तो ये खूबसूरत सा मीठा सा तोहफा हमारी तरफ से आप

तो जी हाँ मेरे प्यारे श्रोता, ये था दिल दिया कला, बहुत ही खूबसूरत गीत है। अब हम फिर आगे चलेंगे हमारे अगले गीत की ओर, और हमारा अगला गीत होगा हमारी अधूरी कहानी, और इस गीत को लरिन लुई रालते इन अरुण छंग अनी चू चू लरिन लुई रालते अरुण छन ही अमा तान चौ अरुण छन वांगिन कंजवाई तान कंतिंगम ची अलवनी मसे कंसवाई तांगन तिथवांग तो आइए सुनते हैं हमारी अधूरी कहानी।

अधूरी कहानी फिल्म का टाइटल सॉन्ग हमारी अधूरी कहानी। अब हम फिर आगे चलेंगे हमारे अगले गीत की ओर। और हमारा अगला गीत जो है वो है तेरे नाम, और ये तेरे नाम फिल्म का टाइटल सॉन्ग है। इस गीत को मॉरिस एल आर खियांगते ने रिक्वेस्ट की है, और ये गीत आप सभी लोगों के नाम।

सुना मैं प्यारे श्रोता, ये था तेरे नाम, और ये तेरे नाम फिल्म का टाइटल सॉन्ग है। इस गीत को मॉरिस एलआर खियांगते ने यहाँ पर रिक्वेस्ट की है। अब हम सुनेंगे छैया छैया, और छैया छैया गीत जो है वो है इस खंड का हमारा आखिरी गीत। और इसी गीत के साथ मैं आप सभी लोगों से विदा लूंगी और फिर आप लोगों के पास लौट के आऊंगी आज रात 10 बजे। तब तक के लिए आप हमारा इंतजार कीजिएगा और सुनते रहिएगा FM जो और FM लाइव पे आने के लिए आप

नमस्कार आप सभी लोगों को आकाशवाणी आइजोल FM सवाई 100.7 MHz पर आपकी आरजीनु भैया आप सभी लोगों का फिर से यहाँ स्वागत करती हूँ। और जी हाँ मेरे प्यारे श्रोताओं, ये खंड है आज रात के हमारे आखिरी खंड हिंदी का, और इस खंड में मैं आप लोगों को वो बहुत ही खूबसूरत गीत सुनाऊंगी। तो हम शुरुआत करेंगे ये जवानी है दीवानी फिल्म के गीत से, और गीत की बोल है कबीरा। तो आइए सुनते हैं कबीरा।

तो कैसा लगा आप लोगों को ये गीत? अभी जो हमने गीत सुना था वो था कबीरा, ये जवानी है दीवानी फिल्म का गीत है। अब हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले गीत की ओर, और हमारा अगला गीत होगा दिल क्या करे सनम की आवाज में।

तो जी हाँ मेरे प्यारे श्रोता, यह था फाल्गुनी पाठक के आवाज में और गीत की बोल है अयो रामा। बहुत ही खूबसूरत गीत है ये और हेताम बदल मन का अंत मेर ठमई में खब मो आमी पास हो खमा से अमे छिया का चो अठ पांग आयता मसे मि पा का ठा ओ वरता ने जब। तो जी हाँ मेरे प्यारे श्रोता, मुझे जे ललजामा की ओर से यहाँ संदेश मिला है। वो लिखता है आर्य नुबई मेर टे बॉयले माँ से कलाउ इन रिपोर्ट जुआ ये ओ थ्वांग तकिन होंग अंग से ओ नेक्स्ट सॉन्ग इतान चाउ अरन तिया जेल सामा वहन फेल थिन तक एम बॉय चुंग चुंग पम लोंग आइ खटांग ट्रांग जेला मिन गाइ थांग माइ छथु शन नि से एसएमएस हि लौ थोन वेरे ट्रांग ट्रांग थिना लो मम कंती अनि मिताई मतुम एंग्रेन तिहा मिताई मरुम रुत आ तुम रुत कति ट्रे अप मासे दिखले लौ रुम रुत खतियां खा हे तम ओवर अंगची हान अम चांद दुर्गेश नागनपुर किया और से मिला है। वो लिखता है आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है, बजाते रहो, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आप भी सुनते रहिएगा। और अथुई लो तुक मोम से छेर सकवेंगे रुंथन वे टांग टांग जैसे। सबसे पहले ये गाना डेडिकेट रहेगा आरजे जी आपके लिए, बहुत बहुत शुक्रिया, और आपके सहयोगी अंग्रेजी आरजे के लिए और मेरे पसंदीदा सभी आरजे के लिए। और डेडिकेट रहेगा मेरे दोस्तों के लिए हितेंद्र दास, अविनाश तेली, बिकन मुंडा, हमें मनबा न्यांग लिंगदियो, रोमोना जी, अबू जुबाल, रजवाना, उमरजीत, अभिजीत, रहीमा, अफसाना, शुमा, झुमा, रुमा, रूबी, सनी। मेरे पत्नी जी का तबीयत थोड़ा खराब है, मैं हल्का करने के लिए मैं ये गाना उनको सुनाना चाहूंगा, तू ही मेरा प्यार है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मीनल आहमेद जी और आपके पत्नी जी भी। हम प्रार्थना करेंगे वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। और जी हाँ, ऐसे साई लव यानी अरन थन बका है चिकन छियार लव फल नांग तेरा कथा लाग लिया लुतुक में रन थन बम नु भाई ते मुतुई ती मयांग अ क्लांग ते इन इहो दो न्या इन वेंग कशेलो ना अरन तियन नकिना अन वेंग कला शिलंग चे क्लांग ते इन कहो अंगा नंग पतुई ते बिन मुदो ने मासे मिनिट सोन वेल जेन जोन अला ओमा लौलमिंग ट्रांग ट्रांग लगावती वे तु चाने लल दिन पुया फल कौन वेंग ला हिया ना जेल प्ले ले तुरखा नंग माता ले लोगा का वे जोंग जोंग ताले आजे जोंग जोंग ताले कठियां ते वेंग शंग शंग मीतान ओ अरुण तिबक ने। आप लोगों को आपकी संदेशों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम फिर आगे चलेंगे हमारे अगले गीत की और हमारा अगला गीत होगा सनमपुरी की आवाज में। गीत की बोल है चला जाता हूँ, तो आइए सुनते हैं चला जाता हूँ।

तो जी हाँ मेरे प्यारे श्रोता, कैसा लगा आप लोगों को ये गीत? अभी जो हमने गीत सुना था वो था फिदा फिमा का गीत, और गीत की बोल है आजा वे माही। अब हम आगे बढ़ेंगे हमारे आखिरी गीत की ओर, आखिरी गीत की ओर, और हमारा आखिरी गीत होंगे धूम मचाले। और ये धूम फिल्म का गीत है, बहुत ही खूबसूरत गीत है। तो आप लोग मैंने बहुत होते लेकिन घंटियांगा, और इसी गीत के साथ मैं आपके आज अनुभव आप सभी लोगों से विदा लूंगी, और फिर कब लौट के आऊंगी अभी तक पता नहीं, लेकिन जरूर लौट के आऊंगी आप लोगों के पास। तो हम सुनेंगे धूम मचाले धूम, और इसी गीत के साथ आज रात के लिए आपके आज अनुभव आप सभी लोगों से विदा लेती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा और हैव अ गुड नाइट स्लीप।